0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं सिरखेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टीअ जो मान
1: वधान। पाकिस्तान
2: अफसार अहमद के साथ।
3: परचम हमारी मिल्ली और दीनी रिवायत का अमी है। यही परचम है जिसने मिल्लत का वकार बुलंद किया। यही परचम है जो हमारी अजमतों का पासबां और हमारी रफातों का निशान है। पाकिस्तान की ताने आजाद वतन में गूंजी तो उनमें परचम की ताबानी और सब्जो सफेद रंगत की फड़फड़ाहट भी शामिल थी। परचम पर बेशुमार कौमी नगमात बने और अब भी बन रहे हैं। पाकिस्तान का पहला कौमी नगमा जिसे मुनव्वर सुल्ताना और दिलशाद बेगम ने गाया था, उसका उनवान भी परचम ही था। इस तरह मुनव्वर सुल्ताना, जिनकी लीडिंग वॉइस में ये नगमा था, पाकिस्तान की पहली कौमी गुलुकारा बन गईं। आप माजी में जाएं और उन लम्हों को मौसीकी और तानों में महसूस करें तो क़याम पाकिस्तान के लम्हात आपको अपने दिल की निगाह से दिखाई देंगे। जब लुटे हुए काफले पाकिस्तान आ रहे थे, मगर सब कुछ लुटने के बावजूद भी पाकिस्तान यानी पाक सरजमीन में आने की ऐसी खुशी थी कि गम की कोई भी परछाई चेहरे पर न थी। और जब वो काफले अमृतसर से लाहौर पहुंचते हैं तो यहाँ रेडियाई लहरों से शौकत थानवी के अल्फाज सुनाई देते हैं कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, तो यकीनन हर आंख अश्कबार हो गई होगी। मौसीकी में ढले चश्मे तसव्वुर से ये हम मंजर बखूब देख सकते हैं कि गुलाम कादिर फरीदी की मौसीकी में तीन अंतरों पर मुश्तमिल ये नगमा सिर्फ एक नगमा और परचमे वतन से मोहब्बत का इजहार ही नहीं, बल्कि एक रियासत से अज़्म का इकरार भी था। आइए समाप्त करते हैं पाकिस्तान का ये पहला कौमी नगमा, जो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब लाहौर रेडियो से अय्यूब रुमानी साहिब की पेशकश में गूंजा और अब तक इसके 4 रीडू भी तैयार हो चुके हैं।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ी असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 03016196851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब होयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03016380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03195 1557।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: हरतान पाकिस्तान,
7: अफसार अहमद के साथ।
8: 1971 के बाद मशरिकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गिटारिस्ट पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने अहलो आयाल को छोड़कर पाकिस्तान चला आया। उसने पाकिस्तान के मर्दम खेज शहर कराची का रुख किया और यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर गिटार से ताने उड़ाने लगा। लेकिन उसकी आवाज में भी एक स्पार्क था, इसीलिए वो टीवी स्टेशन में कभी कभी गाने की मशक भी किया करता था। एक दिन प्रोग्राम संडे के संडे में कोई गुलूकार नहीं आया तो टीवी फनकार मोहम्मद इब्राहिम साहिब के कहने पर उस नौजवान गुलूकार को मौका दिया गया, जिसने अपनी आवाज के जरिए अवाम के दिल जीत लिए और फिर उसने जल्द पाकिस्तान की तान यानी कौमी नगमा भी गाकर खुद को कौमी गुलूकारों की फहरिस्त में शामिल करवा लिया। ये आवाज थी हमारे लेजेंड गुलूकार आलमगीर साहिब की। आलमगीर ने अपना पहला कौमी नगमा 1975 को गाया, जिसे असद मोहम्मद खान साहिब ने तहरीर किया था। फिर आलमगीर की जोशीली आवाज में कौमी नगमात बनना शुरू हुए। आइए समाप्त करते हैं अपने इस अजीम फनकार की आवाज में पाकिस्तान की तान, जिसे अल्फाज का जामा पहनाया था मरहूम जमीलुद्दीन आली ने। ये नगमा दरअसल सुबाइयत और लसानियत के मारों के मुंह पर एक थप्पड़ था, जो कहते थे कि सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद नजरिया पाकिस्तान खत्म हो गया है। लेकिन आली जी से रहा नहीं गया और उन्होंने फौरन पाकिस्तान को अल्लाह की देन बताकर अवाम को मुतवज्जो किया और कहा कि पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है। ये नगमा पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर निसार बज़मी साहिब की मौसिकी में तैयार हुआ। इससे कबल यही नगमा सुभान राथर और मोहम्मद इब्राहिम साहिब ने रेडियो पाकिस्तान कराची के लिए भी गाया था और फिर खालिद वहीद ने भी इस नगमे को बज़मी साहिब की मौसिकी में गाया। लेकिन आलमगीर की आवाज में ये पाकिस्तान की तान आज भी गूंजती है तो हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान का चेहरा दिल से देखने पर मजबूर करती है कि इस पर आंख जो उठी है खुद बरसों तक रोई है। इसका तसव्वुर, इसका खमीर ईमान और वफा का है। पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है।

0: पाकिस्तान बनाने वाले
1: रखी जिन्होंने बुनियाद आज भी है याद।
0: पाकिस्तान बनाने वाले
2: 9 नवंबर 1877 में पैदा होने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफी और तहरीक के पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। अल्लामा ने इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की और मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मरे कॉलेज सियालकोट से एफए का इम्तिहान पास किया। ज़माने तालिब इल्मी में उन्हें मीर हसन जैसे उस्ताद मिले जिन्होंने आपकी सलाहियतों के मुताबिक सही रहनुमाई की। शायर मशरक अल्लामा इकबाल हसास दिलो दिमाग के मालिक थे। आपकी शायरी जिंदा शायरी है जिसने तहरीक पाकिस्तान के हामियों के दिलों में आज़ादी की वो शमा रोशन की जिसे अंग्रेज और हिंदू मजालिम भी ना बुझा सके। सन 1926 में आप पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुने गए। आप आजादी वतन के अलमबरदार थे और बाकायदा सियासी तहरीकों में हिस्सा लेते थे। इसी वजह से आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। बहैसियत सियासतदान उनका सबसे नुमाया कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है जो उन्होंने सन 1930 में अलाहाबाद में मुस्लिम लीग की सदारत करते हुए पेश किया। बाद अजां ये नजरिया एक करारदाद की सूरत में 23 मार्च 1940 को इज्तिमाई तौर पर मंजूर किया गया जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरे सगीर में मुसलमानों के जुदा वतन के हुसूल के लिए तहरीक शुरू की और 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर कराने में कामयाब रही।
0: पाकिस्तान बनाने वाले
1: रखी जिन्होंने बुनियाद आज भी है याद।
0: पाकिस्तान बनाने वाले
3: It's 11:15 AM.
4: This time check is brought to you by
5: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।
7: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008355।
8: सिंध के माथे का झूमर
9: DFM 88 नेटवर्क
10: सिंध की आवाज। मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
11: दिल जान पाकिस्तान हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान दिल जान पाकिस्तान।
12: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरिया परवेज और आप सब लोगों को मेरी तरफ से आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त के दिन हम सब लोगों को ये अहद करना चाहिए कि मिलजुल के कोशिश करें कि हम वक्त गुजारें और पाकिस्तान के लिए दुआएं करें क्योंकि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है और जो भी मिलना है वो मिलना भी पाकिस्तान से ही है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेहद आज़ादी मुबारक।
11: दिल जान पाकिस्तान हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान।

0: सिंध की आवाज।
1: जी हाँ, समय प्रोग्राम आज़ादी जे रंग खुसूसी प्रोग्राम है। 14 अगस्त के हवाले से जशन आज़ादी हवाले से असो खास प्रोग्राम है आज़ादी जे रंग। असा इन वक्त प्रोग्राम में अस कचहरी कराइंदी हाल हवल वी असो तमाम सीनियर सहाफ़ी हनीफ सुहाग असा लाइंदी है। उन मालूमात वी त आज़ादी जहा रंग जशन आज़ादी कि पे मल्हायो साईं। अस्सलाम वालेकुम। हनीफ साग साहब, तक प्रोग्राम जी एफ एम 88 के नेटवर्क में प्रोग्राम है आज़ादी ज रंग में तक भली कर पे चुम। सर, जशन आज़ादी ओ है 14 अगस्त, तक पे मल्हायो पे लाड़काने में?
2: ॾिसो, अॼु असांजी ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। सभिनी जेके पाकिस्तान वासी आहियूं, असांजी अॼु मोहबत जी निशानी आहे। ही मुल्क असांजी जेको आहे अलाए केतिरनि हज़ारे माण्हुनि जी जेको आहे क़ुर्बानी खां पोइ असांखे आज़ादु थी मिलियो।
1: इहा
2: असां लाइ नेमत आहे। हीअ नेमत असांजी अॼु जेको आहे जेका असांजी ख़ुशी आहे उहा ईद जी ख़ुशी आहे।
1: छो
2: त असांजे मुल्क जे असांजी मुल्क जो आज़ादु थियो, उन खां पोइ पंहिंजो असां आज़ादु मतिलबु घुमण लॻासीं, आज़ादु खाइण लॻासीं। जॾहिं ॿाहिरि मुल्क इंसान वञे थो, असीं जॾहिं वियासीं
1: त
2: हुते अहसासु थिए थो त भई असांजो मुल्क केतिरो आज़ादु आहे
1: ऐं
2: ॿियनि मुल्कनि में केतिरियूं पाबंदियूं आहिनि। त उन हवाले सां असांजो मुल्क तमामु वॾो क़ीमती मुल्क आहे, तमामु वॾो अहम आहे ऐं असां ख़ुशि असां तमामु ख़ुशि नसीब आहियूं जो असां पंहिंजे आज़ादु मुल्क में पैदा थिया आहियूं। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु मां आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाडकाण जो सेक्रेटरी बि आहियां। तव्हांखे ॼाण आहे त अॼु आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाडकाण पारां बि राति जेको आहे तमामु शानदार जशन आज़ादी जो असां मुल्क जी आज़ादी ख़ुशी में हिकिड़ी तकलीफ़ कोठाई आहे ऑफिसर सेंटर में जेको आहे
1: ऑफिसर
2: सेंटर आहे जिते म्यूज़िकल नाइट आहे। जंहिंमें सभु जा सुरीला रागी जंहिंमें सुरनि जी वर्खा कंदा ऐं उनखां डेवलप पेश थींदा, क़ौमी नगमा हूंदा जंहिंमें लाडकनि जा ऑफिसर्स शहरी शख़्सियतूं मुख़्तलिफ़ उहे शरीक थींदा।
1: उन
2: खां अलावा हींअर प्रेस क्लब में बि जेको आहे असां प्रेस क्लब पारां बि जेको आहे शानदार तकलीफ़ कलाक खां पोइ शुरू थियण वारी आहे ऐं जंहिंमें बि जेको आहे उते केक कटियो वेंदो ऐं उते शानदार तकलीफ़ थींदी जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शख़्सियतूं शरीक थींदो। ईअं ई सुबुह जो जीअं म्युनिसिपल स्टेडियम में असां कवरेज करणु वियासीं
1: त
2: उते म्युनिसिपल कार्पोरेशन पारां शानदार जेको आहे तकलीफ़ थी, जंहिंमें ॿारनि टेबलूस पेश थिया, क़ौमी नगमा जेको आहे पेश थिया विया, तकीरूं थियूं ऐं पंहिंजे मुल्क खे जेको आज़ादी जे हवाले सां ख़ूबसूरत ॿारनि जेको आहे ख़िताब कयो ऐं पंहिंजे मुल्क जी आज़ादी ख़ुशी ॿुधाई ऐं ॿार एतिरा ख़ुशि हुया ऐं जो तव्हां सोचे नथा सघो त अॼु असांजो ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, तमामु वॾो ॾींहुं आहे ऐं तमामु घणो ख़ुशि आहियूं नेमत ताईं।
1: वॾी महिरबानी सर असांजा हनीफ़ साग साहिबु, तव्हां जनरल सेक्रेटरी आहियो आर्ट काउंसिल लाड़काणे जा ऐं सीनियर सहाफ़ी बि आहियो, माशाला ज़बरदस्त तव्हां ॼाणंदी सर। तव्हांखे असां वरी बि तव्हांजो शुक्रिया अदा कयूं पिया तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। अजी असम असांजो सीनियर सहाफ़ी ऐं आर्ट काउंसिल लाड़काणे जा जनरल सेक्रेटरी तमामु बहितरीन इंसान हनीफ़ साग सां ॻाल्हि ॿोल्हि थी ऐं बिल्कुलु इहा साईं जा हक़ीक़त आहे त असांजो मुल्क पाकिस्तान जेको आहे उहो आज़ादु मुल्क आहे ऐं उन्हनि खां पुछी ॾिसो आज़ादीअ जो त जेके वीचारा पाबंदियूं आहिनि जंहिं ते ऐं उहे आज़ादु न आहिनि, त वतन सां मुहबत बि जेका आहे ईमान जो हिसो आहे ऐं हर इंसान खे पंहिंजे वतन सां मुहबत हूंदी आहे ऐं इहो फितरी अमल आहे। इंसान जंहिं मिटीअ ते जनम वठे थो उहा मिटी उन जे माउ जो रुतबो वठे थी ऐं हर नेक ऐं सालियो ॿार पंहिंजी माउ सां लाज़वाल मुहबत कंदो आहे ऐं असां जॾहिं पंहिंजे वतन जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं तॾहिं वतन जी मिटीअ जी ख़ुशबू असांजे मन खे मुअत्तर करे छॾींदी आहे। छो त ज़िंदगी जो नाम, ज़िंदगीअ जो रुतबो, ज़िंदगीअ जो मान ऐं शान वतन जी धरतीअ सां ई हूंदो आहे। त साईं मुंहिंजा इहा हक़ीक़त आहे त असांजो प्यारो मुल्क वतन पाकिस्तान आज़ादु आहे ऐं असां अॼु पंहिंजे मुल्क वतन में आज़ादु आहियूं ऐं बिल्कुलु थधी हवा में, थधी फिज़ा में असां घुमूं फिरूं पिया ऐं ॿारनि जा जोश ख़रोश ऐं जेके असांजे मुल्क में हर शहर में नंढे वॾे में रैलियूं, प्रोग्राम, टेबल ऐं तकरीरूं ऐं ॿारनि जो जेको कपिड़नि पाइण जो जेको अंदाज़ आहे उहो तमामु बहितरीन आहे। अॼु ईद जो ॾींहुं आहे, ईद जी ख़ुशियूं आहिनि, त अलासी हवाए ख़ुशि करे असांजे तरफ़ां जशन आज़ादी जूं सभिनी खे मुबारकूं जाते असांजो आवाज़ वञे पियो झंग झर में वस्ती वाण में जबल में कचे में पके में जिते भी असांजो ही आवाज़ मुंझ वञे पियो ऐं मां जो मेज़बान नेमतुल्लाह जूने जो असांजी जेका टीम आहे जी एफ एम 88 जी जेका टीम आहे मूंसां गॾु आमिर जागीराणी बलोच आहे अब्दुल्ला चन्नो आहे रिज़वान शेख आहे असांजे तरफ़ां सभिनी खे वरी बि लख लख वाधायूं जशन आज़ादीअ जूं मुबारकूं।

जी हाँ, समय प्रोग्राम आज़ादी जा रंग ऐं ख़ुसूसी प्रोग्राम आहे जशन आज़ादी हवाले सां, 14 अगस्त जे हवाले सां। त तव्हां असां ॾे मुबारकूं लिखी मोकिले सघो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में, ऐं तव्हां असां ॾे राइट ऑप्शन में ईंदव मोबाइल जे में, उते LR खे लिखी स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ नालो सेंड कंदव तव्हां असांजे 888 ते, ऐं GFM88 जी जेका ID आहे, फेसबुक जेको पेज आहे, तव्हां उन ते बि असांजा नाला मोकिले सघो था। असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन आहे, तव्हां हुन ते बि पंहिंजा नाला लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0333221322888। त समय 10:30 बजे वरी असां हलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं, कॾहिं बि न वञिजो, वापसि ज़रूरु ईंदासीं।

0: It's done.
1: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803847।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: हर तान पाकिस्तान
7: अफसार अहमद के साथ।
8: पाकिस्तानी मौसीकी में शाम चौरासी घराने का किरदार भी अहम रहा है। ये घराना पंजाब के गांव शाम चौरासी की निस्बत से शाम चौरासी घराना कहलाता है, जिसके माया नाज फनकार उस्ताद सलामत अली और नजाकत अली ने मौसीकी की दुनिया में न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि इस घराने को दोबारा जिंदा किया। उस्ताद सलामत अली के शागिर्दों में एक ऐसी आवाज भी शामिल थी जिसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कौमी नगमात रिकॉर्ड करवाने का एजाज हासिल किया। इस आवाज को रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल जनाब सलीम गीलानी साहिब ने मुतारफ करवाया और जंग सितंबर के मौके पर इस आवाज ने सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान कराची की लहरों से कौमी नगमात की दुनिया में कदम रखा और उस जंग में भी भारत के छक्के छोड़ा दिए कि हमला आवर फौजें और पूरा भारत इस आवाज से कांप जाया करता था। इस आवाज का नाम था ताज मुल्तानी, जो गुज़िश्ता दिनों कराची में वफात पा गए। ताज मुल्तानी ने पाकिस्तान के लिए 78 कौमी नगमात में अपनी आवाज का जादू जगाया और उनका हर नगमा रेडियो पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी का पैगाम देता है। आइए समात करते हैं ताज मुल्तानी और साथियों की आवाजों में महशर बदायूनी का तहरीर करदा वो मिल्ली नगमा, जो जंग सितंबर का रेडियो पाकिस्तान कराची की तरफ से पहला कौमी नगमा था। लेकिन ये तराना अब भी दुश्मनों के लिए जागते पाकिस्तान का ऐलान है और अवाम के दिलों में भी पाकिस्तान की तान सुनाकर कहता है कि हमारी कुव्वत और हमारी जान कलमाए तैयबा है। हमारी तारीख जिन लोगों से इबारत है उनकी आवाज उनकी ललकार और उनकी तलवार ने जमाने पर अपनी धाक बिठाई है। इस नगमे को उस्ताद नथुखा साहिब ने मौसीकी से सजाया, जो रेडियो पाकिस्तान कराची में सारंगी नवाज थे। लेकिन मौसीकी में भी इतने शानदार उस्ताद के बड़े बड़े गुलूकार उन्हें उस्ताद कामिल का दर्जा देते हैं।

ऐं जिन दोस्तनि नाला लिखाया आहिनि फेसबुक ते एस एम एस ज़रिए ऐं कॉल ज़रिए, उन जा बि नाला ज़रूरु खणंदासीं। ऐं तव्हां असांखे पंहिंजो वक़्तु कढी पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो आहे। जिन बि दोस्तनि उन जूं वॾी महिरबानी ऐं सभिनी खे जशन आज़ादी जूं मुबारकूं। साईं जा आज़ादी हर इंसान जो बुनियादी हक़ आहे। कंहिं बि मुल्क, कंहिं बि क़ौम या कंहिं बि माण्हूअ खे इहो कतई हक़ु कोन्हे त हू कंहिं बि मुल्क, क़ौम या माण्हूअ खे ग़ुलाम बनाए, उन जे वसीलनि, माल मिल्कियत ते कब्ज़ो करे उन खे मज़लूम करे छॾे। आज़ादीअ लाइ जिदोजहद कंदड़ फ़र्द मज़लूम ऐं महकूम क़ौमनि जा अनमोल हीरा हूंदा आहिनि। वतन ऐं वतन जे माण्हुनि जे हक़नि लाइ जेके बि माण्हू मैदान ते निकिरी ज़ुल्म, ॾाढ ऐं जबर ख़िलाफ़ु उथी बीहनि था ऐं बुलंद आवाज़ कनि था, ज़ुल्म खे ज़ुल्म चवनि था, उन्हनि जा नाला तारीख़ में सोनहरी अखरनि सां लिखिया वञनि था। ॿिए तरफ़ बावकार माण्हू, क़ौमूं वतन जी आज़ादी लाइ वेड़ कंदड़नि खे पंहिंजे अखियुनि ऐं जीअ में जायूं ॾींदड़ आहिनि, छो जो उन्हनि जो रुतबो उत्तम ऐं आला हूंदो आहे। त समिन आज़ादु मुल्क आहे ऐं आज़ादीअ जो हक़ीक़त में उन्हनि खां ई क़दुरु पुछो जेके वीचारा आज़ादु न आहिनि। त साईं जा हिकिड़ो पंहिंजो क़ौमी गीत ॿुधूं पिया, वरी बाद में अव्हां जा नाला खणंदासीं।

जी हा समय प्रोग्राम आज़ादी रंग में जिन दोस्तन असां के जशन आज़ादी हवाले से मुबारक दिन उन्होंने वही मेहरबानी असो बिन कलाकन जो प्रोग्राम उन्होंने बुध है असो उन्होंने साथ दिनों है दोस्तन जो उनकी वही मेहरबानी अली हसन कनासरो है गोठ दुरमद कनासरे का भा जी वही मेहरबानी आसफ अली चाचड़ वासफ अली बुगटी लाड़काने का गोठ सचेड़ो मंगरियो लगे बकाबुर का सोराब अली मंगरियो फरहान अली नज़र मोहम्मद मंगरियो गोठ झंडो मरी का इनायत खासकेली कुर्बान खासकेली शाहबान खासकेली फतेह मोहम्मद कनासरो बेबी शुगफ्ता नाज कनासरो फारूक अहमद फराज अहमद कनासरो सराई मोहम्मद नवाज गोठ धूण का खालिक लाशारी मीरपुर खास का मीरपुर खास का अजीज सोलंगी भुट्टो सोलंगी जीशान अली सोलंगी गोठ इज़त जी इज़त माशी कोटली जी का फ़कीर मोहम्मद जलालाणी महबूब जलालाणी असलम जलालाणी गोठ गुलाम हुसैन जलालाणी का भाइरन की वही मेहरबानी गोठ ठुल जूणे जो खां असदुल्ला जूणे जो तौकीर अहमद जूणे जो बेबी अबिया बेबी अजवा जूणे जो महरम अली जतोई गोठ आगा खान जतोई खां दीदार अली बिरोही गढ़ी खेरे खां इकबाल लाशारी मीरपुर खास का भाउ जी वही मेहरबानी जवार मोहम्मद बचल शंबाणी शायर फारूक महर गोठ नंढा महर इमदाद जतोई अब्दुल खालिक जतोई मुबशिर हुसैन किफ़ातुल्ला फारूक हैदर जतोई दादू खां भाइरन की वही मेहरबानी गुलाम मुर्तज़ा लुंड बलोच मीरपुर खास खां साईं की वही मेहरबानी चनेसर भेण आज़ाद भेण साईं की वही मेहरबानी हमेशा कॉल कंदा रहंदा आहिनि गोठ मौलिनो माशी लॻे वॾनि महरनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख़्तियार अली सोलंगी ज़हीर अब्बास वफ़ा हुसैन सोलंगी गोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली गुलाम रसूल कुंभर गोठ हसू जतोन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद नसरुल्ला जतोई गोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर अहद अकबर शादाब चांडियो गोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टाफ सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जूणे जो मुनीब रहमान मुजीब रहमान जूणे जो यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद अली मयसर फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई निसार अली जतोई त सभिनि दोस्तनि जी वॾी महिरबानी आख़िरी क़ौमी गीत मिली नगमो वांग जे नाम पिया कयूं।

अजिहा समय प्रोग्राम है आज़ादी रंग जो वक्त पहुंचे पाँची पुजाणी से हयाती बखैर वरी अवां सां मुलाकात ज़रूर थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणे खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

0: देखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर। अब आप KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

सिंध समेत समूरे मुल्क में अजूड़िया सीहों जश्न आज़ादी कौमी जोश ए जज्बे से मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर, कोयटा समेत नंढनि वॾनि शहरनि में शानदार आतिशबाज़ी। इस्लामाबाद में 31 तोपन ऐं सूबाई राजधानियुनि में 21 तोपन जी सलामी सां ॾींहं जी शुरूआति कई वई। मुल्की सलामती ऐं ख़ुशहाली लाइ ख़ुशी दुआऊं घुरियूं वयूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर इस्लामाबाद में यादगार फतह जो इफ़्तिताह कयो। क़ौमी झंडो बि फड़कायो वियो। तक़रीब दौरान यादगार फतह जी तामीर बाबति दस्तावेज़ी फिल्म बि ॾेखारी वई। हवाई फ़ौज जे शाहीननि जो शानदार फ्लाई पास कराची में मज़ारे काए ते गार्ड्स जी तब्दीली जी पुरवकार तकरीब थी गुज़री। पाकिस्तान नेवी जे गेट्स एज़ाज़ी गार्ड्स जा फर्ज़ निभा संभालिया विया। गवर्नर सिंधियाल हाशमी ऐं वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी मज़ार काए ते हाज़िरी, गुलनि जी चादर चाढ़ी। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जी क़यादत में पाकिस्तान भारत खे ज़िलत वारी शिकस्त ॾिनी। ईरान अमेरिका जंग बंदी में फील्ड मार्शल नायब वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर अहम किरदार अदा कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो इस्लामाबाद में यादगार फतह जे इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त यादगार फतह मुहरक आहे, हक़ में कामयाबी शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जो लाजवाब दास्तान आहे। गज़ा में नसल कशी कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। ग्रेटर इसराइल जो ख़्वाब कॾहिं बि पूरो न थींदो। वज़ीर आज़म जे हक़ वारी जंग में अज़ीम कामयाबी ते क़ौम खे मुबारकूं। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर खे भेटा पेश। शहबाज शरीफ चयो त फील्ड मार्शल जी क़यादत में हथियारबंद फ़ौज दुश्मन खे तारीख़ी शिकस्त ॾिनी। फिज़ाई ऐं सामूंडी फ़ौज जे सरबराहनि जी क़यादत में फ़ौज जो किरदारु साराह जोॻो आहे। मुहरक़ ऐं हक़ जी कामयाबी पाकिस्तान जी इज़त में ग़ैर मामूली वाधि कई, जंहिं जो मिसाल नथो मिले। पाकिस्तान जे पाणीअ जो हिकु टुफड़ो असांजी रेड लाइन आहे। भारत सिधी वाट ते न आयो त केरु जवाब ॾिनो वेंदो। पाकिस्तान खिते ऐं दुनिया खे तकरारनि खां पाक ॾिसणु चाहे थो। तकरार गॾियल क़ौमनि जे ठहिरावनि मुताबिक़ हल थियणु घुरिजनि। अमन चाहियूं पर अमन जी ख़्वाहिश खे कमज़ोरी न सम्झो वञे।

सिंध पाकिस्तान ठाहिण में मुतहद हुई ऐं अॼु पाकिस्तान जे तामीर ऐं तरक़ीअ लाइ बि सिंध मुतहद आहे। जॾहिं असां खां 7 या 8 भेरा वॾे मुल्क पाकिस्तान ते हमिलो कयो त समूरी क़ौम हिकु थी वई। अॼु असां पंहिंजी फ़ौज जे करे सुकून जी निंड करे रहिया आहियूं। असांजो वजूद पाकिस्तान जे करे आहे। पाकिस्तान जी तरक़ीअ में असां सभिनी खे पंहिंजो इजतमाही किरदारु अदा करणु घुरिजे।

0: سینئر وزیر شرجیل انعام مہمڑ پاراں ہنے اسیں جشن آزادی والے دیہاڑے تے سنگوری قوم کے مبارکوں. شرجیل انعام مہمڑ چیو ہے تو پاکستان اساں جو وطن ہے, سنجانت اساں دی امید ہے, خوابن جی تعبیر ہے. یہ وطن شہیدن جی امانت, بزرگن جی قربانی جی نشانی ہے, ایندڑ نسلن جی امید ہے. اج ان مانن کے یاد کرن جو ڈی ہے جن پاکستان جو خواب ڈٹھو ہو. اج اساں جے کا آزادی والی فضا میں ساہ کھنی رہا ہوں, ان کے پویاں بے شمار قربانی جی ایک لازوال دا.
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: हर तान पाकिस्तान.
3: अफसार अहमद के साथ.
4: पाकिस्तानी मौसीकी में शाम चौरासी घराने का किरदार भी अहम रहा है. ये घराना पंजाब के गांव शाम चौरासी की निस्बत से शाम चौरासी घराना कहलाता है, जिसके माया नाज फनकार उस्ताद सलामत अली और नजाकत अली ने मौसीकी की दुनिया में न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि इस घराने को दोबारा जिंदा किया. उस्ताद सलामत अली के शागिर्दों में एक ऐसी आवाज भी शामिल थी जिसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कौमी नगमात रिकॉर्ड करवाने का एजाज हासिल किया. इस आवाज को रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल जनाब सलीम गिलानी साहिब ने मुतारफ करवाया और जंग सितंबर के मौके पर इस आवाज ने सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान कराची की लहरों से कौमी नगमात की दुनिया में कदम रखा और उस जंग में भी भारत के छक्के छोड़ा दिए कि हमला आवर फौजें और पूरा भारत इस आवाज से कांप जाया करता था. इस आवाज का नाम था ताज मुल्तानी, जो गुज़िश्ता दिनों कराची में वफात पा गए. ताज मुल्तानी ने पाकिस्तान के लिए 78 कौमी नगमात में अपनी आवाज का जादू जगाया और उनका हर नगमा रेडियो पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी का पैगाम देता है. आइए समात करते हैं ताज मुल्तानी और साथियों की आवाजों में महशर बदायूनी का तहरीर करदा वो मिल्ली नगमा, जो जंग सितंबर का रेडियो पाकिस्तान कराची की तरफ से पहला कौमी नगमा था. लेकिन ये तराना अब भी दुश्मनों के लिए जागते पाकिस्तान का ऐलान है और अवाम के दिलों में भी पाकिस्तान की तान सुनाकर कहता है कि हमारी कुव्वत और हमारी जान कलमाए तैयबा है. हमारी तारीख जिन लोगों से इबारत है, उनकी आवाज, उनकी ललकार और उनकी तलवार ने जमाने पर अपनी धाक बिठाई है. इस नगमे को उस्ताद नथुखा साहिब ने मौसीकी से सजाया, जो रेडियो पाकिस्तान कराची में सारंगी नवाज थे. लेकिन मौसीकी में भी इतने शानदार उस्ताद के बड़े बड़े गुलूकार उन्हें उस्ताद कामिल का दर्जा देते हैं.

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601100।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
5: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
6: मैं सबा फैसल। 14 अगस्त वो दिन है जब मुसलमानों के काफिले आजादी को मंजिल और उनके ख्वाब को ताबीर मिली थी। काफिले की मंजिल और खाक की ताबीर आजादी। आजादी, आजादी जो एक अनमोल नेमत है, जो जिंदगी का हुस्न और निखार है, इंसानियत की बहार।
5: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
7: पाकिस्तान बनाने वाले
8: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
7: पाकिस्तान बनाने वाले
9: मुमताज सियासी रहनुमा, मुफक्किर, शायर नवाब बहादुर यार जंग का असल नाम मोहम्मद बहादुर था। वो 3 फरवरी 1905 को नवाब नसीर यावर जंग के यहाँ हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। नस्ल के सरजोई पठान थे। वालिद के वफात पर जागीर पर लाखों का कर्ज था, जिसे चंद साल में बेबाक कर दिया और फराखत के बाद अहलिया के हमरा हज किया और मिस्र, शाम, दमिश्क, इसराइल, लबनान, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान की सियाहत की। हज के बाद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया। मुस्लिम लीग के इजलासों, खासकर लाहौर और कराची में शिरकत की। अंग्रेज हुकूमत ने उनकी जबान बंदी की और जागीरें जब्त कर ली और नकलो हरकत पे पाबंदी लगा दी, लेकिन वो वफात तक अपने मौकफ से ना हटे। नवाब बहादुर यार जंग की ख्वाहिश थी कि अल्लामा मशरकी खाकसार तहरीक को मुस्लिम लीग का अस्करी बाजू बना दें। नवाब बहादुर यार जंग ने खाकसार तहरीक से अलहदगी इख्तियार कर ली। इसके बाद उन्होंने पैन इस्लामिज्म के हवाले से मोतमर ईद मिलादुन्नबी के नाम से एक तंजीम कायम की और वो खुद इस तंजीम के सरपरस्ते आला थे। इस तंजीम के तहत रियासत के मुख्तलिफ उलमा और दानिश्वरों को अपने ख्यालात के इजहार के लिए दावत दी जाती थी।
10: नवाब बहादुर यार जंग ने 1940 के इजलास में शिरकत की। 1942 के इजलास में तो उन्होंने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के सदारती खिताब का उर्दू तर्जुमा किया। वो सरहद और दीगर सूबों में मुस्लिम लीग की नशर व अशात में पेश पेश रहे। जब कायद आजम ने उन्हें पुकारा, वो वालहाना आगे बढ़े। इसी बिना पर बर्रे सगीर पाक व हिंद में उन्हें कायद आजम के बाद दूसरा मकाम हासिल था और नौजवान उन्हें कायद का जानशीन कहा करते थे। नवाब बहादुर यार जंग कश्मीरी मुसलमानों से भी गहरी मोहब्बत रखते थे। अपनी तकारीर के जरिए वो कश्मीरी मुसलमानों के हकूक की आवाज़ बुलंद करते थे। इसी बिना पर 1943 में डोगरा हुकूमत ने उन्हें कश्मीर से निकाल दिया था। नवाब बहादुर यार जंग 25 जून 1944 को अपने दोस्त जस्टिस हाशिम के घर हरकत कल्ब बंद हो जाने से अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। कायदे आजम और नौजवानों के लिए उनकी वफात की खबर बिजली बनकर गिरी। नवाब बहादुर यार जंग इंसानियत का एक दरख्शां पैकर थे। उनकी वफात पर मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमानों ने भी मातम किया। हिंदुस्तान की मशहूर शायरा सरोजनी नायडू ने उन पर मर्सिया भी लिखा।
7: पाकिस्तान बनाने वाले
8: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
7: पाकिस्तान बनाने वाले।
11: It's 11:15 AM.
12: This time check is brought to you by
13: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
14: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: साथ साथ हम आगे चलेंगे और हम एक नगमा प्ले करेंगे और नगमे के साथ साथ हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाएंगे और साथ साथ आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं. इस वक्त फेसबुक के ऊपर अगर आप सर्च करते हैं हमें GFM 88 के पेज के ऊपर आपको पोस्ट मिलती है आज़ादी की बहार, आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन की पोस्ट होती है, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे नहीं सॉरी हमें हमें 8881 पे भी मैसेज कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर होगा 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग हमें. हम प्ले करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए साहिर अली बग्गा की आवाज को. और जब से ये नगमा कोमल रिलीज हुआ है तो कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंस डे नहीं है जिस पर ये हमने ना प्ले किया हो. और आपने देखा होगा कि रोड्स के ऊपर जहां भी आपको सेलिब्रेशन करते हुए लोग मिल रहे होंगे उन्होंने लाउड स्पीकर पे ये नगमा जरूर प्ले किया होगा. कोई हो ना हो ये वाला जरूर होगा.
1: ये मैं कल रात से सुन रही हूं. हम जब गए थे वहां भी बड़ा चल रहा था, हर शॉप पे ये सॉन्ग, कोई जा रहा है ऑटो में कार में तो ये नेशनल सॉन्ग लाजमी होता है.
0: और बिल्कुल जब से मार्का हक हुआ है तब से तो ज्यादा सेलिब्रेशन हमारी डबल हो गई है. हर इंडिपेंडेंस
1: डे के ऊपर नेशनल जो सॉन्ग है इनमें बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई जो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर होता है अच्छे लगते हैं, ये उनमें से एक है.
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और पाकिस्तान जिंदाबाद नगमे के साथ साथ मुझे कुछ याद आता है कि दुश्मनी वतन को हम ऐसी सजा देते हैं, दुश्मनी वतन को हम ऐसी सजा देते हैं, रहती हस्ती तक निशान इबरत का बना देते हैं. आंख उठे जो मेरे वतन की बागीचों पर, ऐसी नजरों को हम मिट्टी में मिला देते हैं. जोर कितना ही भला बाजुए दुश्मन में हो, ऐसे दुश्मन को हम हस्ती से मिटा देते हैं. बात लफ्जों की नहीं, चाहे तू आजमा के दे, हम जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज. एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए. घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69.

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ऐं सरखेज़ असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
4: हर तान पाकिस्तान
5: अफसार अहमद के साथ
6: पाकिस्तान की तान हर अंदाज में गूंजी मौसीकी के नए नए और कदीम रिवायती सभी रंग हमारे कौमी नगमात में शामिल हैं कई फनकारों ने ये नगमात अपने रिवायती अंदाज में गाए तो कई गुलूकार रिवायती अंदाज में जोशीली जिद्दत पैदा करके इन नगमात को अमर कर देते हैं मलिका गजल फरीदा खानम जो खुद सरापा गजल भी हैं उन्होंने भी कौमी नगमात में अपनी आवाज की ताने बखेरी और बेशबहा कौमी नगमात रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के लिए रिकॉर्ड करवाए फरीदा खानम जिन्होंने बंगाल के शहर कलकत्ता में आंखें खोली थी लेकिन फिर अमृतसर चली आईं तो बंगाल के गले का हुस्न और पंजाब की ताने दोनों उनकी आवाजों में शामिल हो गईं फरीदा खानम का शुमार भी उन्हीं फनकारों में होता है जिन्होंने जंगे सितंबर में कौमी नगमात के जजीरे में कदम रखा और फिर मुख्तलिफ वक्तों में कई यादगार कौमी नगमात रिकॉर्ड करवाए जो अब नायाब हो चुके हैं 1974 में फरीदा खानम ने रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर जनाब हमीद नसीम का तहरीर करदा कौमी नगमा नीम गजली अंदाज के साथ रिकॉर्ड करवाया जिसकी ताने पूरे मुल्क में गूंजी ये नगमा पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया को दोस्ती और अमन के पैगाम का ऐलान था और उसमें उस वक्त की हुकूमत के मंशूर यानी मसावात को भी अहमियत दी गई इब्तिदा में इस नगमे के बेशुमार रिकॉर्ड्स बने जो हाथों हाथ फरोख्त हो गए लेकिन फिर ये नगमा भी नायाब हो गया लेकिन सुनने वालों को आज भी जरूर याद होगा तो आइए समाप्त करते हैं लाल मोहम्मद की मौसीकी से सजा फरीदा खानम का ये कौमी नगमा जो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची पर रिकॉर्ड करवाया था।

हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं सरखेज़ असांजे हालीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोनो यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां।

कराची में मज़ार आए थे गार्ड्स की तब्दीली जी तब्दीली पाक नेवी के किड्स गार्ड्स जो जिम्मेवार संभाले वरतूँ वे वजीर सैयद मुराद अली शाह गवर्नर ए काबीना मेंबर से गु मज़ार आए थे हाजिरी गुलन की चादर चाढ़े दुआ घुरी आई जी सिंध भी पुलिस ऑफिसर से गु मज़ार आए थे हाजिरी भरी सियासी समाजी अगवाणन ए शहर की मज़ार आए आमद जारी पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है भारत सीधी रीत रस्ते ते ना आयो तो सीधी रीत जवाब दिनो वो जंग न पर अमन चाहूं था पर अमन वाली ख्वाहिश के कमजोर न समझो वे इस्लामाबाद में यादगार फतेह की इफ्तिताही तकरीब के खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो तो भारत एक तरफो सिंतास मुआहिदो मुअत्तल कयो पाकिस्तान दा केर भी मेरी अख से डिसण की जुरत न करे को मुतहद हुए तो केर भी शिकस्त न तो दई सके असा सब पाकिस्तान जा वारिस आयो इख्तिलाफी दुश्मनी में तब्दील न थियण घुर्जन।

सिंध मुतहद हुई ऐं सिरहंदी सूबनि वारो बहस नओ नाहे। सूबे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ परडे॒ भॼी वेंदा आहिनि या पाण में विढ़ी पवंदा आहिनि। मज़ार काए ते हाज़िरीअ बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली सिंध जे सरहदनि बाबति केतिरा ई भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। सूबनि जूं ॻाल्हियूं कंदड़ भले पंहिंजो शौक़ पूरो करे ॾिसनि, सूबनि में क़याम वारो तरीक़ो आइन में मौजूद आहे, सिस्टम बि नाकाम नाहे थियो, खामियूं थी सघनि थियूं।

0: मकान बनाने वाले
1: रखी जिन्होंने बुनियाद आज भी हैं याद।
0: पाकिस्तान बनाने वाले
2: 31 जुलाई सन 1893 को कराची में पैदा होने वाली कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की छोटी बहन मोहतरमा फातिमा जिना को तहरीके आज़ादी में मर्दों के शाना बशाना हुसूले पाकिस्तान की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लेने पर पाकिस्तानी कौम मादर मिल्लत और खातून पाकिस्तान के नाम से भी पुकारती है। मोहतरमा फातिमा जिना ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डेंटिस्ट्री की डिग्री हासिल करने के बाद बम्बई में बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी और साथ ही साथ हिंदुस्तान की मुसलमान खवातीन को दरपेश मसाइल के सद्देबाब के लिए भी कोशा रही। मगर सन 1929 में कायदे आजम की अहलिया रतनबाई के इंतकाल के बाद आपने अपना क्लिनिक बंद करके कायदे आजम के साथ सकूनत इख्तियार कर ली ताकि तहरीक आज़ादी के मिशन में बराह रास्त शामिल हो सकें। आप बिलउमूम इंसानी और बिलखुसूस खवातीन के हुकूक की अलमबरदार थीं। आपको हरगिज ये गवारा न था कि औरतों को कमतर मखलूक समझा जाए, लिहाजा आपने बेगम राना लियाकत अली खान के साथ मिलकर ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन की बुनियाद डाली, जिसके तहत इस अमर को यकीनी बनाया जाता था कि औरतों के हुकूक का हर मुमकिन तहफ्फुज हो। मोहतरमा फातिमा जिना की अनथक काविशों की बदौलत तहरीके पाकिस्तान में खवातीन के हुकूक को भी शामिल कर लिया गया। आपने बरसगीर पाको हिंद की खवातीन को ये एहसास दिलाया कि अलग मुमलिकत के हुसूल में औरतें भी मर्दों के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों ने 23 मार्च सन 1940 की करारदादे पाकिस्तान से लेकर 14 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान के हुसूल में कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए।
0: पाकिस्तान बनाने वाले
1: रखी जिन्होंने बुनियाद आज भी हैं याद।
0: पाकिस्तान बनाने वाले
3: It's 12:15 p.m.
4: This time check is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
6: Dil Jaan Pakistan. Hamara Desh, Hamara Maan. Dil Jaan Pakistan. Dil Jaan Pakistan.
7: Assalamu Alaikum. Main hu Aisha Sana aur meri taraf se aap sab ko बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी जो यूथ है, जो 65% है ऑफ द पॉपुलेशन, हमें ये सोचना चाहिए कि यूथ को हमने किस तरह से अपना एसेट बनाना है। सोच के बाद हमें एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है और फिर उस पर अमल पैरा होना भी बहुत ज़रूरी है।
6: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
8: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
9: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
8: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
9: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर लेजर क्लिनिक नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
10: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: आजादी की बहार, आजादी स्पेशल ट्रांसमिशन, और आप और मैं साथ साथ हैं, और कोमल भी, कोमल और मैं आपके साथ साथ हैं पूरी पूरी एक बजे तक, आपको और मेरा साथ है। जी कोमल
1: जी, बिल्कुल। तो हम लोग बात करते हैं आजादी के हवाले से यार, के अच्छा मतलब हम बात कर रहे थे झंडियों के ऊपर,
0: झंडियों के ऊपर बात कर रहे थे, बिल्कुल।
1: तो और आप लोग बताएं भाई, अपने बच्चों के आपने जो है क्या क्या दिलाया, और आपने किस तरीके सेलिब्रेशन की, ये भी हमारे साथ शेयर करें, हम भी आपके साथ शेयर करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शेयर करने के लिए आप लोग मुझे नहीं, सॉरी मुझे नहीं, हमें कमेंट कर सकते हैं
1: और
0: कॉल भी कर सकते हैं। 888-1 पे भी आप लोग मुझे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, और कॉल्स हम लेना स्टार्ट करते हैं। जी आप लोगों की बहुत सारी कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं हमें, और कॉल्स के साथ साथ ना हम क्या करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। तो हमारा लाइव कॉलिंग नंबर जिन लोगों को नहीं पता, 03000113488, इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉल है हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। हेलो
1: हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से?
2: जी सर गुलाम मोहम्मद खान नसीराबाद से बात कर रहा हूँ।
0: कैसे भाई, ठीक ठाक?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक।
1: सबसे पहले हमारी तरफ से, मेरी और साल की तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे
0: बहुत
2: मुबारक। आपको भी मेरी तरफ से जश्न आजादी की बहुत बहुत मुबारक हो।
1: अच्छा जी, ये बताएं आप किस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं?
2: जी हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, झंडे वगैरह लगा कर और मिली नगम कर अपना जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपने वतन से।
1: अच्छा, हमारे साथ प्रोग्राम भी इंजॉय कर रहे हैं?
2: जी जी बिल्कुल।
1: ये आपने नाम ही नहीं लिया ना।
2: जी जी जी सर, प्रोग्राम एंजॉय कर रहा हूँ ना, प्रोग्राम में मिलनक में जो है वो प्रोग्राम में ही चल रहे हैं ना, जाहिर सी बात है।
0: अच्छा, झंडियाँ लगाई हैं आपने?
2: जी जी।
0: कहाँ लगाई हैं?
2: अपने घर में।
1: अच्छा ये बताएं आपकी मतलब बचपन की जो मतलब आप स्टूडेंट लाइफ में थे वो अच्छी थी, या फिर ये वाली है 14 अगस्त में क्या फर्क है आपके लिए, आपने क्या देखा इतने अरसे में?
2: जी स्टूडेंट लाइफ में वो तो बहुत बेहतरीन थी, जाहिर सी बात है, बच्चों के साथ खेलना कूदना, और अब तो और बात है।
1: बिल्कुल,
0: चलें जबरदस्त, बच्चों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं और झंडियां भी लगाई हैं, और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। और ये थे कॉलर 03000113488, इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, तो कॉल कीजिए, और साथ साथ बहुत सारी कॉल्स आप लोगों की हमें रिसीव होंगी। और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
3: मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर कैसे, ठीक ठाक?
3: अल्लाह पाक आप कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताइएगा कि आजादी सेलिब्रेट कर रहे हैं?
3: जी
0: ओके, कैसे कर रहे हैं?
3: आज हमारे किताब वगैरह।
0: चले जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं 14 अगस्त कब आती है? 14 अगस्त कौन सी तारीख को आती है?
3: हेलो
0: जी जी, 14 अगस्त कौन सी तारीख को आती है?
3: 14 अगस्त।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके जबरदस्त, और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल से कोमल हम ना ऐसा करते हैं, अगले कॉलर से ना हम सुनते हैं मिली नहीं, मिली नगमा नहीं, कौमी तराना अब पता चलेगा
1: आप सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: हाँ जी, और मैंने सोचा है कि आज जो जो बंदा मुझे मिलेगा ना, मैं उससे कौमी तराना जरूर सुनूंगी। मुझे तो खैर आता है, लेकिन मैं देखूंगी कि लोगों को आता है कि नहीं।
1: मतलब स्कूल तक की हद में होता था, लोग डेली हम एक रूटीन में इसको पढ़ते थे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ता है लोग दूर हो जाते हैं, इस चीज से ध्यान ही नहीं देते।
0: नहीं, दूर होने की बात ही नहीं है कि एक चीज नहीं, हमारे कंट्री का नेशनल एंथम है, ये तो आपको एनी हाउ जो है ना याद होना चाहिए, और ये आपकी नेशनैलिटी की पहचान है। जब आप स्कूल में जाते हैं आपको सिखाया जाता है डेली, जब आप जाते हैं स्कूल में असेंबलीज होती है, वहां पे सबसे पहले कौमी तराना पढ़ा जाता है, और वो इसलिए पढ़ा जाता है कि हर बच्चे को बचपन से जो है ना याद याद हो जाए कौमी तराना और ताहयात उसे याद रहे एज अ पाकिस्तानी. तो हम नेक्स्ट कॉलर लेते हैं और देखते हैं. हेलो
4: बाजी, अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम, दोबारा कॉल लग गई आपकी भाई.
4: बिल्कुल बिल्कुल, छो जो दोबारी कॉल मां बाजी ही हैं या तो माजरता बैठा दो अगर आवाज कम पहुंचे.
0: अच्छा मुझे बताएं कौमी तराना आता है आपको?
4: हाँ, पर अगर मैं माता आ गए एक
0: कौमी तराना आता है?
4: बिल्कुल आता है,
0: सुना दे बस.
4: पाकिस्तान पाकिस्तान
0: नहीं नहीं
1: कौमी तराना जो हम किताबों
4: बाजी, हम तो किताब बना रहे, हमारे को नहीं आता है
0: किताबों वाला, नहीं आता. वेरी बैड. चलिए कोई बात नहीं, और कुछ कहेंगे?
4: हाँ हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी तो मैं वफा अब्दुल वहीद जो अगेन कार दोबारी मिलाई है. मेरे पास है कुछ भाई है.
0: चले नगमा आपको सुनाते हैं. हाफिज, थैंक यू सो मच. और 03000113488. अच्छा कौमी तराना सुनाना है, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं सुनाना. देखते हैं नेक्स्ट कॉलर. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
5: वालेकुम अस्सलाम.
0: इस्मा किशोर, कैसे ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले आपको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक.
5: आपको भी.
0: ओके, कराची में आप इस वक्त?
5: जी बिल्कुल.
0: सेलिब्रेशन हो रहा है, कैसी चल रही है सेलिब्रेशंस वगैरह?
5: फिलहाल तो अभी उठाऊं.
1: अच्छा अभी उठे, मतलब इन्होंने आतिश में हमारा मिस कर दिया.
5: हाँ, मैंने डायरेक्ट कॉल लगाई.
0: ओके ठीक है जी. अच्छा कोई मिली नगमा सुनाएंगे या अगर कौमी तराना आता है तो कौमी तराना सुना? हाँ,
1: कौमी तराना की कोई लाइन सुना दे, स्टार्ट ही बता दे.
5: ये मेरे वतन.
0: नहीं नहीं, कौमी तराना. पाक सरजमीन शाद बाद.
5: अगर नहीं नहीं, इसमें अगर मिस्टेक होगी तो
0: मिस्टेक होगी ना, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे.
1: अच्छा ये बताइए लिखा किसने है?
5: याद करके जो आया हूँ वही.
1: अच्छा चले ये
0: चले चले आप सुना दे.
1: कौमी तराने की पहले धुन बनी है या फिर तराना लिखा गया है ये बताएं?
5: पहले धुन.
1: कंफर्म है पहले धुन बनी है?
5: कंफर्म तो नहीं पता लेकिन धुन है.
1: बिल्कुल सही बात है, पहले धुन बनी है कि हमारा तराना वो है कि पहले जिसकी धुन बनी है फिर वो लिखा गया है.
0: अरे वाह क्या बात है,
5: मतलब तुक्का लग गया.
1: अच्छा तुक्का लगा था मैंने, अब आपको कंफर्म कर दिया. अच्छा आप अब स्टार्ट करें कौमी तराना.
0: चलो नहीं, असल में उन्होंने मिली नगमा सुनाना है. सुना दें.
1: मेरे भी प्रोग्राम में बहुत आते थे इनके कॉमेंट.
0: अच्छा ये वही वाले
1: कराची से ना, तभी तो कह रही
0: हूं. ओके
5: ओके,
1: कमल मेरे मैसेजेस नहीं पढ़ती
0: बस को. जी जी.

0: मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैसेज देना चाहते हैं।
0: बस खुश रहें, खुश रहने दें।
2: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हम लेते हैं,
1: लेना पड़ेगा
2: कोमल, लेना पड़ेगा
1: लेना पड़ेगा। मुझे लिसनर्स कहते हैं कि आप लोग बहुत ब्रेक लेते हो।
2: हाँ, आज हम दोनों साथ में ना, इसलिए हमें जो है ना ब्रेक ज्यादा लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम
1: बातें कम हो रही है,
2: हमारी बातें कम हो रही है। चलिए खैर, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, आजादी की बहार स्पेशल ट्रांसमिशन।

0: हमने जो है ये मुल्क हासिल किया है।
1: हाँ जी,
0: अच्छा जी, तो आज हम पहले तो बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भी इसमें शामिल करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो चले जी, आप उनके लिए एक शेर पढ़ें रुखसार।
1: ओके जी, शेर अगर हम पढ़ते हैं कायद के लिए, वैसे तो हम
0: बहुत बड़ा इंसान है इनका,
1: बिल्कुल जितने भी शेर पढ़ेंगे हम वो कम है कायद के लिए, और ऐसा ही है। और वो कुछ इस तरह लिखता है शायर कि तेरी दानिश तेरी हिकमत तेरी हिम्मत तेरा ईमान निजात अहले हिंदुस्तान हयात अहले पाकिस्तान।
0: बिल्कुल है कि उन्होंने उनकी मेहनत उनकी मतलब ये कि ना ख्वाब इकबाल का था और कायद की उमंग थी, उनकी मेहनत थी, तो आज हमने ये मुल्क हासिल करा। लेकिन उनके साथ जो लोग इस तहरीक में शामिल थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, बेमिसाल कुर्बानियों का ये नतीजा है जो हमें ये मिला है, कितनी माओं बहनों की दुआएं थी इसमें शामिल। मतलब हम कैसे इस दिन को भूल जाएं, जब लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ये है, कुछ भी है वो आपका आज का दौर है, लेकिन हम हमारे जो बुजुर्गों ने कुर्बानी दी उनको फरामोश नहीं करें। आज आप ये देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी इस मुल्क को बनाने में, इसलिए कि आप अपने मुल्क में आपस में लड़ लो झगड़ लो, नहीं, उस वक्त वो एक कौम थे ना, आज भी हम ऐसे ही रहना है।
1: बिल्कुल, एक कौम थे और एक कौम बन के रहना है,
0: इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। कोई दुश्मन इस कौम को नहीं तोड़ सकता ना खत्म कर सकता, पाकिस्तान का नाम रहती दुनिया तक रहेगा
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कोमल, आपने देखा होगा कि क्रिकेट के मौके पर जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो देखें एक जो मैच का ग्राउंड होता है या कहीं भी बड़ी स्क्रीन्स लगी हो तो वहां पे हर बंदा होगा, वहां पे महाजर भी होगा, वहां पे सिंधी भी होगा, वहां पे पख्तून भी होगा, वहां पे हर रंग नस्ल हर जबान सब कुछ सब एक होकर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की जीतने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल जहां आप क्रिकेट ग्राउंड में एक हो सकते हैं तो वहां पे
0: पाकिस्तान के अलावा जो है ना, हम तो सिर्फ पाकिस्तान में खुश नसीब है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जो ओवर सीरीज है आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए वो कितना तड़पते होंगे यहाँ आने के लिए कि हम भी यही दिन, क्योंकि उनको इतनी आजादी नहीं थी कि वो इस तरीके से सेलिब्रेट करें। लेकिन अब पाकिस्तानी तो माशाल्लाह दुनिया में जगह जगह सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, बड़े जोश खरोश से करते हैं, और पता है दूसरे लोगों को मौका नहीं देते।
1: बिल्कुल, दूसरे लोगों को मौका नहीं देते और वो
0: निकल जाता है।
1: हाँ, वो आउट ऑफ कंट्री भी बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की आजादी के दिन को मना रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि मतलब अपना मुल्क अपने घर जैसा होता है, अपना घर जैसे अपना घर होता है तो ये अपना घर ही है। तो जब आप यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि यार अपना घर अपना घर ही था।
0: पहले लोग कहते हम बाहर जाएं, जाने के बाद एहसास होता है हमने क्या किया है, अपना वाकई अपना था, जैसा भी है अपना छत अपनी अपना घर अपना है बस।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ एक कॉल लेते हैं उसके बाद हम

0: हमारा शरीर फाइल है
1: भाई, अब क्या कर सकते हैं ये बताएं
2: ये बस अब
1: रुसार भी कह रही है कि हाँ। मैं लेकर में लेकर आना चाहती हूँ, मैंने कहा नहीं लाना,
2: मैं सेलिब्रेशन में रास्ते से लेती हुई हाँ, जो मुझे तंग करेगा वहीं पे मैं बाजा बजाऊंगी ठीक है, डन हो गया। अच्छा
0: मुझे
2: हाँ ये बताइए कि झंडियाँ लगाई हैं आपने?
0: हाँ जी माशाल्लाह।
2: चले माशाल्लाह जबरदस्त।
1: सुनाएंगे आप
0: जी?
2: कौन तराना?
0: चलो थोड़ा सा सुना देता हूँ।
1: चले जी सुनाए।
2: अरे नहीं, कौमी तराना, कौमी तराना, कौमी तराना, असल में हमारे लोगों को कौमी तराना
0: याद नहीं आ रहा मुझे,
1: जो लाइनें याद है वो तो गा सकते हैं।
0: चलो पाथर जमीन सात पाओ ईश्वर अजीम सात पाओ, बस ज्यादा नहीं आ रहा
2: ज्यादा नहीं आ रहा, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है।
1: बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी
2: मेरे पास।
1: अच्छा आप इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आजादी के दिन के हवाले से, क्या पैगाम है जो आप पूरी कॉल को देना चाहते हैं?
2: कॉल ड्रॉप हो चुकी है कोमल, और इसी के साथ
1: और टाइम भी
2: बहुत लिमिटेड है जी, और इसी के साथ हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। और अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पर अगर हम थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो 25 दिसंबर 1876 को रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुए थे।
1: अच्छा 25 दिसंबर मेरी भी बर्थडे आती है।
2: अरे वाह क्या बात है, मतलब दो दो खुशियां एक साथ, फिर तो हम दो दो
1: देखें उस दिन कायदे आजम की बर्थडे भी आती है और मेरी भी होती है, हम पारा पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान हम बंद करवाते हैं, पता है आपको छुट्टी करवाती हूं। कराची में पैदा हुए थे,
2: बिल्कुल कराची में पैदा हुए थे, और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो मिशन हाई स्कूल से हासिल की, और इसके लिए आला तालीम के लिए वो चले गए थे इंग्लिस्तान, वहाँ जाकर इन्होंने मुलाजमत की, और फिर कुछ अरसे बाद मुलाजमत छोड़ी और कानून की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला ले लिया 1896 में। वहाँ से कानून की डिग्री कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हासिल की, और उस वक्त कायदे आजम ने सियासत में भी हिस्सा डाला और वहाँ से सियासत भी शुरू की,
1: सियासी करियर का उन्होंने फिर आगाज किया और इंडिया मुस्लिम लीग नून बनी उस टाइम पे,
2: मुस्लिम लीग नून बनी और इंडिया वापस आकर उन्होंने ये जो लीग है ये बनाई, और इंडिया वापस आने के बाद आपने मुंबई में वकालत शुरू की और जल्द ही अपना बहुत नाम कमाया। इसके साथ साथ बर्तानिया जाने से पहले आपकी शादी आपकी एक दौर की रिश्तेदार एमी बाई से हुई, और इसके अलावा कायदे आजम बर्तानिया जाने के बाद कुछ अरसे बाद ही वफात भी कर गए थे। तो ये कुछ कायद की जिंदगी पे
1: हमारा मतलब ये कि वो बीमार थे शदीद हलालत में भी, उन्होंने मुल्क के लिए काम किया, जबकि डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वो रेस्ट करें आराम करें, लेकिन उन्होंने दिन रात एक पाकिस्तान बनने के बाद भी वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ही लगे रहे।
2: हाँ जी रात, और कायदे आजम का उस टाइम पे सिर्फ एक ही पैगाम था और वो था सिर्फ काम काम काम,
1: वो अब हम हमारे पर आ चुका है हम काम
2: करें। और कायदे आजम बिल्कुल उस टाइम पे वो जानते होंगे कि इस टाइम पे उनका काम करना कितना जरूरी है, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने पाकिस्तान हमें देखे जाना है और वो देखे गए भी। तो एक कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान
1: हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान।
2: अट्रिब्यूट टू कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना।

0: ओके जी, बहुत ही खूबसूरत से ट्रिब्यूट कायद आजम मोहम्मद अली जिना के लिए. और स्मार्ट किशोर कमेंट कर रहे हैं, सिस कोमल से कहो मेरी ये आईडी है और मुझे याद नहीं है मैंने कभी इनको ये मैसेज या कमेंट किया हो प्लीज. अच्छा तो इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ अच्छा मेरा माइक ऑफ रह गया था, सॉरी.
1: सोशल मीडिया पे हुई नहीं.
0: ओके
1: ठीक है ना, मेरी कोई आईडी नहीं है बिल्कुल.
0: हाँ इनके कोई आईडी नहीं, ये आपको तंग नहीं करेंगे, बेफिक्र रहे.
1: मैं हूँ ही नहीं ना तो मैं आऊंगी. अच्छा लोग मुझसे कहते हैं कोमल ये आपकी आईडी है ना, जब मैं प्रोग्राम करती मैंने कहा भाई मैं हुई नहीं सोशल मीडिया.
0: अब वो जब आप किसी मीडियम के ऊपर आते हैं ना, मीडिया में कहीं भी, तो फिर वो आपकी फेक आईडीज, फेक अकाउंट सब हो जाता है.
1: बिल्कुल. तो हाँ. मैंने अपने हर लिसनर्स को ये बात बताई कि ना मेरा कोई टिकटॉक अकाउंट है, ना मेरी एफबी आईडी है, ना इंस्टा है. मैं इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इस तरफ भी आऊँ या मैं दूँ. मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे मिल जाती हूँ सबको.
0: हाँ और वो खास खास लोगों के लिए है जिसमें मैं भी मौजूद हूँ. चले जबरदस्त जी, मेरे ख्याल से लास्ट में एक कॉलर ले लेते हैं और कॉलर से एक छोटी सी बात करते हैं. जी हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: याली मदद अल्ताफ बलो जागजानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो.
0: वालेकुम अस्सलाम.
2: मिल जाती है दुआ से.
0: बिल्कुल.
2: सुनते हैं कि हर चीज मिल जाती है दुआ से. हमने तुमको भी मांगा है खुदा से, जश्न आजादी मुबारक हो. और एक बहुत प्यारी पोएट्री लेकर आया हूँ, बहुत थोड़ा सा टाइम दूंगा. कि हर दिल पे रुखसार पे भी टैक्स लगेगा, हर दिल पे रुखसार पे भी टैक्स लगेगा, अब वसल के इसरार पे भी टैक्स लगेगा. अरे महबूब की गली में भी जाना संभल के, सुनते हैं कि दीदार पे भी टैक्स लगेगा, अब टैक्स अदाओं पे भी देना पड़ेगा, बेवजह इनकार पे भी टैक्स लगेगा. और जाएगा अब कौमी खजाना इनका है, और इसके बीमार पे भी टैक्स लगेगा. अब बाढ़ की रौनक बढ़ाएगा कौन? अब बाढ़ की रौनक बढ़ाएगा कौन? हर फूल पे हर खार पे टैक्स लगेगा. जिस जुल्फ पे लिखते हैं सुबह शाम सुकुरमल, उस जुल्फ की हर तार पे भी टैक्स लगेगा. दिल भर के देख लो जितना भी अब चाहो, हर दिल पे हर तार पे भी टैक्स लगेगा. अरे मियां जी, दीवार को अब अपने समेटो. कहते हैं के शहर पे भी टैक्स लगेगा. अपने अल्लाह बलो जा जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूलो, जश्न आजादी मुबारक हो. जश्न आजादी मुबारक हो. और यहाँ जाते जाते एक लाइन कहूंगा कि आजादी करा दो मेरी प्रिया कुमारी के उजाला परवीन जैसी बच्चियां जो अगवा हो जाती हैं यहाँ से खुदा के वास्ते. मुझा भावरो जाते जाते आवाज तां ॿुधो था जेके भी अगवा कंदड़ हो यार खुदा के वास्ते मोटाए ॾियो इहे काज मोटाए.
0: बहुत खूबसूरत बात. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
1: पोएट्री पे भी टैक्स लगाना चाहिए.
0: इस पोएट्री पे टैक्स
1: लगाए
0: लेकिन हम नहीं लगाएंगे. और बिल्कुल, और मैं कोशिश करती हूँ कि जिस मीडियम के ऊपर हम हैं, हमारे साथ साथ हमारे हमसे जितने लोग जुड़े हैं, हमारे सुनने वाले, वो यहाँ आके खुल के बात कर सके. तो इसी के साथ हम फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत. टाइम बहुत लिमिटेड है जी. कोमल लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे?
1: पैगाम देना चाहूंगी अपने तमाम सुनने वालों को, अपने तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से बाहर भी है. मैं उनको भी कहूंगी कि हर जगह जहां भी हो अपने मुल्क की इज्जत का पहले ख्याल रखें. खासकर बाहर कंट्री में ऐसा काम ना करें कि आपके मुल्क का नाम खराब हो जाए. और हमें कोशिश करनी है कि हमें दिन रात मेहनत करनी है कि हमारा मुल्क उस मुकाम पर पहुंचे जहां और दूसरा दुनिया के दूसरे ममालिक पहुंच चुके हैं.
0: बिल्कुल
1: इंशाल्लाह. और हम वो दिन भी बहुत जल्द देखेंगे. और हमें इकट्ठा एक कौम बन के रहना है.
0: बिल्कुल जी बिल्कुल. और आजादी की बहार, और आज़ादी की बहार स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका यहीं पे इख्तिताम होता है. और आज़ादी को मनाएं, आज़ादी को जिए. आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ादी से सांस लेते हैं, इस नेमत का शुक्र अदा करें. और दुआ करें अल्लाह ताला से कि हमारी इस आज़ादी को किसी की नज़र ना लगे, और हमारे इस मुल्क को कभी किसी की नज़र ना लगे. हमारा मुल्क तरक्की करें, हम तरक्की करें और आगे बढ़ते रहें. इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाज़त. लास्ट में प्ले किया है जी कौमी तराना. और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. दिस इज मी आर जी रुखसार एंड आर जी कोमल. वी आर साइंस आउट. टेक केयर. गुड बाय. अमान खुदा. अल्लाह हाफिज.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।

सिंध समेत समूरे मुल्क में 79 जश्न आज़ादी कौमी जोश ए जज्बे से मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपन ए सूबाई राजधानी में 121 तोपन की सलामी से ॾींहं जी शुरुआत। मुल्की सलामती ए खुशहाली लाइ खुसूसी दुआऊं भी घुरियूं वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते कौमी परचम बि फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तक़रीबूं। आज़ादी जे खुशीअ में केक बि काटिया विया। नौजवाननि, नारियुनि, ॿुढनि ऐं ॿारनि पारां वतन सां मुहबत जो भरपूर इज़हार करण जो सिलसिलो जारी आहे। कराची में मज़ार कायते गार्ड की तब्दीली की तब्दीली। पाक नेवी के किड्स गार्ड्स जो जिम्मेवार संभाले वरतूं। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह गवर्नर काबीना मेंबर से गड मज़ार कायते हाजिरी भरी। गुलन की चादर चाढ़ी दुआ घुरी है। जी सिंध में पुलिस ऑफिसर से गड मज़ार कायते हाजिरी भरे। सियासी समाजी अगवाणन में शहरों की मज़ार कायते आमद जारी है।

मुल्की सियासी क्यादत जो आजादी के उणासी ॾिण ते कौम के वाधायूं कायद आजम मोहम्मद अली जिना समेत समूरन बानिन के भेटा पे सदर आसिफ जरदारी 14 अगस्त आजादी लाए ॾिनल कुर्बानी के याद करण जो ॾींहुं आहे। सभिनी खे गॾिजी मुल्की दिफ़ा लाइ कम करणो पवंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त क़ाइदे आज़म जे ॾिनल नज़रिए तहत मुल्क खे खुशहाल ऐं तरक़ी याफ़्ता बणायो वेंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त आज़ाद बुज़ुर्गनि ऐं अज़ीम जिदोजहद जो समर आहे। हथियारबंद फ़ौजनि पारां 79 आज़ादी जे ॾिण ते क़ौम खे वाधायूं। फील्ड मार्शल नेवल ऐं एयर चीफ पारां क़ौम खे मुबारक ॾिनी वई आहे। SPR चयो आहे त समूरनि ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण ऐं वतन जी दिफ़ा वारो अज़म बरक़रार आहे। क़ौम सां गॾिजी हथियारबंद फ़ौज अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ साबित क़दम रहंदी। सिंध मुतहद हुई आहे ऐं रहंदी। सूबनि वारो बहस नओं नाहे। सूबे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ परॾेह भॼी वेंदा आहिनि या पाण में विढ़ी पवंदा आहिनि। मज़ार काए ते हाज़िरीअ बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली सिंध जे सरहदनि बाबति केतिरा ई भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। सूबनि जूं ॻाल्हियूं कंदड़ भले पंहिंजो शौक़ पूरो करे ॾिसनि। सूबनि जे क़याम वारो तरीक़ो आईन में मौजूदु आहे। सिस्टम बि नाकाम नाहे थियो। ख़ामियूं थी सघनि थियूं। सिंध समेत समूरे जश्न आज़ादी जे मौके ते रैलियूं तकरीबूं रैलियूं ऐं मेड़ाका कराची हैदराबाद सखर लाड़काणे ऐं मीरपुर खास में जश्न आज़ादी जूं रैलियूं। बदीन खैरपुर नवाबशाह सांगर ठठो टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में तकरीबूं। कंदकोट टंडो जाम तलार नबीसर रोड टंडो आदम फेज़गंज वगुण ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं। दादू मिठी खैबर खिपरो समारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि जश्न आज़ादी जूं तकरीबूं होटायूं वयूं। तकरीबनि दौरान झंडा फड़काए केक काटिया विया। शागिर्दनि पारां टेबलोज़ पेश कया विया।

अमेरिका तरफा पाकिस्तानी कौम के आज़ादी के दिन से मुबारकू पेश कया तो अमेरिकी परे वजीर मार्को रूबियो है अमेरिका ए पाकिस्तान गडियल सहकार से सलाहतन के तरक्की में तब्दील कर रहा है अजोके ढीह से पाकिस्तान से भाईवारी मजबूत दोस्ती वो अजम जो भी वर्चाव क्यूँ था।

0: रोड़ी वेझो गुजरियल रात शहीद थियल पुलिस अहलकार खलील अहमद पंवर जे सखर में जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। पुलिस कांस्टेबल खलील अहमद पंवर जी जनाज़े नमाज़ पुलिस लाइन में अदा कई वई। जनाज़े नमाज़ में SSP सखर समेत पुलिस आफिसरन ऐं सियासी समाजी अॻवाणनि जी शिरकत। सिंधड़ी वेझो मिठड़ाओ केनाल में बुड़ी वेल नींगरी जो लाश चौथे ॾींहुं बि न मिलियो। ॻोल्हा जारी। ॻोठ जहान खान शहर वटां केनाल में बुड़ी वेल 13 वरनि जी आमना शर जो लाश न मिलियो। बुड़ी वेल नींगरी जे चौथे ॾींहुं बि मकामी टोबनि ज़रिए ॻोल्हा जारी आहे। मड़ न मिलण सबबि वारिस परेशान आहिनि। वारसनि पारां मदद जी अपील कई वई आहे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रीन

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिले, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: अदा
4: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेहरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 0301-399-2836।
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1565-724।
7: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: हर तान पाकिस्तान,
2: अफसार अहमद के साथ।
3: पाकिस्तान की ताने बखेरने वालों में हर खित्ते के गुलूकार और मौसीकार शामिल हैं। सिंध की धरती जहां से उस्ताद झंडे खान ने बर्रे सगीर की फिल्मी मौसीकी मुतारफ करवाई, वहां से इस खित्ते की खूबसूरत आवाजों ने हमारी सकाफती और जदीद मौसीकी में भी अपने सुरों के रंग भरे। हैदराबाद सिंध में जन्म लेने वाली फनकारा हुमैरा चन्ना का नाम भी हमारे बेहतरीन गुलूकारों की फहरिस्त में शामिल है, जिन्होंने लोक गायकी से लेकर फिल्मी गीतों को गाकर अवामी मकबूलियत हासिल की। 80 की दिहाई के इब्तदा में पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर अपनी आवाज के जरिए मकबूलियत हासिल करने वाली इस गुलूकारा ने परवीन शाकिर का तहरीर करदा मौसीकी से मुजयन वाहिद कौमी नगमा किरण मेरी जमीन पर उतर गई बहार की गाकर नगमात से खुद को मुंसलिक किया और फिर रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कई कौमी नगमात गाए। 1986 में उन्होंने नियाज अहमद की मौसीकी में पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर मसरूर अनवर साहिब का तहरीर करदा मिल्ली नगमा दुआएं सारी वफाएं सारी ऐ मेरी सरजमी तेरे नाम रिकॉर्ड करवाया तो उसका शुमार उस वक्त के मकबूल कौमी नगमात में होने लगा, मगर जल्द ही ये नगमा भी नायाब हो गया। सिंध और पंजाब का सौती आहंग हुमैरा चन्ना की आवाज की नुमाया खसूसियत है, इसीलिए नियाज अहमद ने इस नगमे की धुन में वही रिवायती अंग भी शामिल किए। आइए समात करते हैं पाकिस्तान की ये तान, दुआएं सारी वफाएं सारी।

0: बनाने वाले हैं।
1: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
0: पाकिस्तान बनाने वाले
2: पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक और शायर अबुल असर हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1901 को जालंधर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हफीज शमसुद्दीन था।
3: अबुल असर हफीज जालंधरी पहले अरबी और फारसी की मरवजा तालीम हासिल की, बाद में अंग्रेजी उलूम भी सीखे। इब्तिदा ही में शायरी करने लगे। अपनी मुनफरिद तवील नज्म शाहनामा इस्लाम की वजह से मशहूर हुए। उन्होंने अपने गीतों में हिंदी लफ्ज का इस्तेमाल किया। उनकी शायरी फितरी और इंसानी हुस्न से भरी पड़ी है। तकसीम हिंद के बाद हफीज जालंधरी अफवाज पाकिस्तान में बतौर डायरेक्टर जनरल ऑफ मोरल्स और मामलात कश्मीर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देते रहे। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हैं। उनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जो 4 जिल्दों में शाया हुआ है। इसके जरिए उन्होंने इस्लामी रिवायात और कौमी शिकवे का अहिया किया, जिस पर कौम ने उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया। इसके अलावा उन्हें मलकुल शोरा और खान अल मालिकुल बहादुर के खिताब से नवाजा गया और हिलाल इम्तियाज और तमगा हुस्ने कारकर्दगी अता किया गया।
2: अबुल असर हफीज जालंधरी की तसानीफ में नगमा जात 1925, हिंदुस्तान हमारा के उनवान से हिंदुस्तान की तारीख पर मुश्तमिल नज़में 1926, फूलमाला 1928, सोजो साज 1933, शाहनामा इस्लाम 1929-1947, उम्रो अय्यार नावल 1934, तसव्वुर कश्मीर 1937, बच्चों की नज़में तलखियां शीरी 1946 में शाया हुई, ये तमाम शामिल हैं। आपका इंतकाल 21 दिसंबर 1982 में हुआ और आपको मीनार पाकिस्तान के अहाते में दफनाया गया।
0: पाकिस्तान बनाने वाले
1: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
0: पाकिस्तान बनाने वाले

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: खुश की ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601100।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: पाकिस्तान बनाने वाले
7: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
6: पाकिस्तान बनाने वाले
8: सन 1878 में हिंदुस्तानी मुसलमानों के अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर रियासत रामपुर में पैदा हुए। आपको बचपन ही से इस्लामी तालीमात से गहरा शगफ था। इब्तदाई तालीम रामपुर और बरेली में हासिल की, जबकि आला तालीम के लिए अलीगढ़ का रुख किया और BA का इम्तिहान शानदार कामयाबी से पास किया के अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अव्वल आए, जिसके बाद ICS की तकमील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से की। हिंदुस्तान से वापसी पर रामपुर और बड़ौदा की रियासतों में मुलाजमत की, मगर जल्दी मुलाजमत से दिल भर गया और कलकत्ते जाकर अंग्रेजी अखबार कॉमरेड जारी किया। मौलाना की लाजवाब इंशा परदाजी और जहनत तबा की बदौलत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद भी कॉमरेड बड़े शौक से पढ़ा जाने लगा। अंग्रेजी जुबान पर अबूर के अलावा मौलाना की उर्दू दानी भी मुसल्लम थी। उन्होंने एक उर्दू रोजनामा हमदर्द भी जारी किया, जो बेबाकी और बेखौफी के साथ इजहार ख्याल का कामयाब नमूना था। जद्दोजहद आजादी और तहरीक अदम तआवुन में भरपूर हिस्सा लेने के जुर्म में मौलाना की जिंदगी का काफी हिस्सा कैदोबंद में बसर हुआ। 1919 की तहरीक खिलाफत के बानी भी आप ही थे। आप जनवरी सन 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लिस्तान गए, जहां आपने आजादी वतन का इंतहाई शिद्दत से मुतालबा करते हुए फरमाया कि जब तक अंग्रेज मेरे मुल्क को आजाद नहीं करेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगा।
6: पाकिस्तान बनाने वाले
7: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
6: पाकिस्तान बनाने

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज,
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर के रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोतिया जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: समूरे मुल्क में 79 जश्न आज़ादी जो कौमी ॾींहुं ऐं जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपनि ऐं सूबाई राजधानियुनि में 21 तोपनि जी सलामीअ सां ॾींहं जी शुरूआति कई वई। मुल्की सलामती ऐं खुशहालीअ लाइ ख़ुसूसी दुआऊं बि घुरियूं वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम बि फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तकरीबूं, आज़ादी जी ख़ुशीअ में केक बि काटिया विया। नौजवाननि, नारियुनि, ॿुढनि ऐं ॿारनि पारां वतन सां मुहबत जो भरपूर इज़हार करण जो सिलसिलो जारी आहे।

कराची में मज़ार क़ाइद ते गार्ड्स जी तब्दीली जी तब्दीली पाक नेवी जे किड्स गार्ड्स जूं ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह गवर्नर ऐं काबीना मेंबर्स सां गॾु मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी, गुलनि जी चादर चाढ़े दुआ घुरी। आई जी सिंध बि पुलिस आफ़िसर सां गॾु मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी भरे। सियासी समाजी अॻवाननि ऐं शहरनि जी मज़ार क़ाइद आमद जारी आहे। मुल्की सियासी क़यादत जूं आज़ादी जे 79वें ॾिण ते क़ौम खे वाधायूं। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली समूरनि बाननि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त 14 अगस्त आज़ादी लाइ ॾिनल क़ुर्बानीनि खे यादि करण जो ॾींहुं आहे। सभिनी खे गॾिजी मुल्की दिफ़ा लाइ कमु करणो पवंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ाइद आज़म जे ॾिनल नज़रिये तहत मुल्क खे खुशहाल ऐं तरक़ी याफ़्ता बणायो वेंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त आज़ाद बुज़ुर्गनि ऐं अज़ीम जिदोजहद जो समर आहे। हथियारबंद फ़ौजियुनि पारां 79वें आज़ादी जे ॾिण ते क़ौम खे वाधायूं। फील्ड मार्शल नेवल ऐं एयर चीफ पारां क़ौम खे मुबारक ॾिनी वई। ISPR चयो आहे त समूरनि ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण ऐं वतन जे दिफ़ा वारे अज़म खे बरक़रार आहे। क़ौम सां गॾिजी हथियारबंद फ़ौज अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ साबित क़दम रहंदी।

सिंध मुतहद हुई आहे ऐं रहंदी। सूबनि वारो बहस नओं नाहे। सूबे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ परॾे भॼी वेंदा आहिनि या पाण में विढ़ी पवंदा आहिनि। मज़ारे काए ते हाज़िरी बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली सिंध जे सरहदनि बाबति केतिरा ई भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। सूबनि जूं ॻाल्हियूं कंदड़ भले पंहिंजो शौक़ु पूरो करे ॾिसनि, सूबनि जे क़याम वारो तरीक़ो आइन में मौजूदु आहे। सिस्टम बि नाकाम नाहे थियो, ख़ामियूं थी सघनि थियूं। सिंध समेत समूरे जश्न आज़ादी जे मौके ते रैलियूं, तकरीबूं, मेड़ाका, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काणे ऐं मीरपुर खास में जश्न आज़ादी जूं रैलियूं, बदीन, खैरपुर, नवाबशाह, सांगर, ठठो, टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में तकरीबूं, कनकोर, टंडो जाम, तलार, नबीसर रोड, टंडो आदम, फेसगंज, वगुण ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं, दादू, मिठी, खैबर, खिपरो, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि जश्न आज़ादी जूं तकरीबूं कोटायूं वयूं। तकरीबनि दौरान झंडा फड़काए केक काटिया विया, शागिर्दनि पारां टेबलोस बि पेश कया विया। ईरानी सदर मसूद पज़िशान ऐं रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटिन पारां 79 आज़ादी जे ॾींहं ते पाकिस्तानी क़ौम खे वाधायूं। ईरानी सदर मसूद पज़िशान चयो आहे त ईरान पाकिस्तान सां लाॻापनि खे वधीक मज़बूत बणाइण वारे अज़म ते क़ाइमु आहे। रूसी सदर प्यूटिन पारां बि पाकिस्तानी क़ौम खे वाधायूं ॾिनियूं वयूं। अमेरिका तरफ़ां पाकिस्तानी क़ौम खे आज़ादी जे ॾिण ते मुबारकूं पेश कयां थो। अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अमेरिका ऐं पाकिस्तान गॾियल सहकार सां सलाहियतनि खे तरक़ी में तब्दील करे रहिया आहिनि। अॼोके ॾींहं ते पाकिस्तान सां भाईवारी मज़बूत दोस्ती वारे अज़म जो बि वर्चाउ कयूं था।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जो मोती जड़ो दाणो छटाई करने में आसान, ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदे और पाए बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
6: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन एंड औरतन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-96-8051
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिकर छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अब आपका सिक एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

रोशनी जो काफिलो मंजिल तरफ गामजन स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तदरीसी अमारत कुर्बान अली मेमन अकेडमी मशाक तजर्बेकार तदरीसी अमलो सरसब्ज बागीचो फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी जो लेबॉरेटरियो ऑडियो विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी इंग्लिश से खसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजा रांदन जो मैदान उते मुनक़िद मुकाबला तहरीर तकरीर ज़हनी आजमाइश जा मुकाबला पंजे अखियन के नूर न्याणियों प्यारन पुटन के मुनासिब तलीम तरबियत लाए अजु ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विजिट करियो वधिक राबते लाए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453

0: मीरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94
1: हर तान पाकिस्तान
2: अफसार अहमद के साथ।
3: ये 1982 की बात है जब पाकिस्तान हर शोबे में तरक्की की राह पर गामजन था। सियासी हालात भी मामूल पर आ चुके थे। खेलों की दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हो रहा था। मौसीकी की दुनिया में शहंशाह गजल मेहदी हसन, मलिका तरन्नुम नूर जहां, मलिका गजल फरीदा खानम अपनी आवाजों की जौबन पर थे। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर भी इब्तदाई मराहिल में था। ज़रई तरक्की भी जारी थी और देही इलाकों में कौमी शऊर भी परवान चढ़ रहा था। इसी बात के पेश नज़र कराची से ताल्लुक रखने वाले एक कौमी शायर जनाब सहबा अख्तर ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए एक पुरजोश तराना तख्लीक किया, जिसे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के एक नए आर्टिस्ट गुलाम अब्बास और साथियों ने गाकर पूरे मुल्क में धूम मचा दी। रज़मिया धुन से मुजय्यन ये कौमी नगमा हर अहले वतन के दिल की अक्कासी करते हुए कहता था कि इस मुल्क को हम अपनी मेहनत और लगन से अजीम तर बनाएंगे और राह तरक्की पर हमारा ये सफर अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि जब रहनुमा पुरखलूस हो तो कोई भी ताकत कौम को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। इस नगमे को रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल जनाब सलीम गिलानी साहिब ने मौसीकी में ढाला, क्योंकि वो खुद एक अच्छे मौसीकार और शायर भी थे और उनकी पेशकश में जो नगमा भी गूंजता वो पाकिस्तान की यादगार तान बन जाता। ये नगमा पाकिस्तानियों की अज़्म आहन की वो तस्वीर है जिसका हर अंतरा कौमी जोश से मामूर होकर कहता है कि मोहब्बतों की राह में बस इत्तेहाद चाहिए, हजार मुश्किलें सही बस एतमाद चाहिए, हमारे ज़र्ब अज़्म से पहाड़ टूट जाएंगे, वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे।

Brasil.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

कराची में मज़ार क़ाइद ते गार्ड जी तब्दीली जी तब्दीली पाक नेवी जे किड्स गार्ड जूं ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं। वॾे वज़ीर सैद मुरादरी शाह गवर्नर ऐं काबीना मेंबर सां गॾु मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी, गुलनि जी चादर चाढ़े दुआ घुरी। आई जी सिंध बि पुलिस आफ़ीसर सां गॾु मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी भरी। सियासी समाजी अॻवाणनि ऐं शहरनि जे मज़ार क़ाइद ते आमद जारी आहे। मुल्की सियासी क़यादत जूं आज़ादी जे 79वें ॾिण ते क़ौम खे वाधायूं। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना समेत समूरनि बाननि खे भेटा पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त 14 अगस्त आज़ादी लाइ ॾिनल क़ुर्बानीनि खे यादि करण जो ॾींहुं आहे। सभिनी खे गॾिजी मुल्की दिफ़ा लाइ कम करणो पवंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ाइदे आज़म जे ॾिनल नज़रिये तहत मुल्क खे खुशहाल ऐं तरक़ी याफ़्ता बणायो वेंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त आज़ाद बुज़ुर्गनि ऐं अज़ीम जिदोजहद जो समर आहे। हथियारबंद फ़ौजियुनि पारां 79वें आज़ादी जे ॾिण ते क़ौम खे वाधायूं। फील्ड मार्शल नेवल ऐं एयर चीफ पारां क़ौम खे मुबारकबाद ॾिनी वई। ISPR मूजिबि समूरनि ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण ऐं वतन जी दिफ़ा वारो अज़म बरक़रार आहे। क़ौम सां गॾिजी हथियारबंद फ़ौज अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ साबित क़दम रहंदी।

0: 300 साल पहले साईं सदाई करे मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सिंधियों की दुआ यही है, सबसे पहले हमारा सिंध सरसब्ज शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे। और उसके बाद कई लोग आए हर वक्त, कोई लंदन भाग गया जिसको खुद ओन नहीं करते, अब उसके लोग जो बात करते हैं अगले दिन खुद लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से। ये सिंध की मिट्टी है, ये सुबह ये दरिया सिंध का पानी है जो इस सुबह सिंध को कभी नुकसान नहीं होने देगा। मैं फिर आ जाऊं कि ये आईनी तरीका है, सुबह सिंध की असेंबली कई बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। हाँ, डिबेट करनी है, 100 बार करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जीडीए और पता नहीं कौन सी जमात का नाम लिया, फंक्शनल लीग, कौन सी फंक्शनल लीग या जीडीए, जो कभी मुश्तरका अलग अलग ही है। मतलब मुझे तो आपके सवाल ही समझ, छोड़े यार इन लोगों को, अब ये पुराने हो गए, अब आगे की तरफ चले। काफी
1: सुबह ठाण वारो बेस पुराण कैंक एडवेंचर करणो आहे त सिंधी साव पास कराइंदो, असां सिंधी हिफाज़त कंदासीं। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी मज़ार कायते मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल, मुराद अली शाह चयो आहे त असां सियासत खे नाकाम नथा समझूं, सूबे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ परे भॼी वेंदा आहिनि या पाण में विढ़ी पवंदा आहिनि। सिंध असेंबली सूबे जे सरहदनि बाबति केतिरा ई भेरा ठहराव मंज़ूर करे चुकी आहे, सूबनि जूं ॻाल्हियूं कंदड़ भले पंहिंजो शौक़ पूरे करे ॾिसनि।

0: हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर

0: स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: पाकिस्तान बनाने वाले
7: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
6: पाकिस्तान बनाने वाले
8: सन 1878 में हिंदुस्तानी मुसलमानों के अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर रियासत रामपुर में पैदा हुए। आपको बचपन ही से इस्लामी तालीमात से गहरा शगफ था। इब्तदाई तालीम रामपुर और बरेली में हासिल की, जबकि आला तालीम के लिए अलीगढ़ का रुख किया और BA का इम्तिहान शानदार कामयाबी से पास किया के अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अव्वल आए, जिसके बाद ICS की तकमील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से की। हिंदुस्तान से वापसी पर रामपुर और बड़ौदा की रियासतों में मुलाजमत की, मगर जल्दी मुलाजमत से दिल भर गया और कलकत्ते जाकर अंग्रेजी अखबार कॉमरेड जारी किया। मौलाना की लाजवाब इंशा परदाजी और जहनत तबा की बदौलत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद भी कॉमरेड बड़े शौक से पढ़ा जाने लगा। अंग्रेजी जबान पर अबूर के अलावा मौलाना की उर्दू दानी भी मुसल्लम थी। उन्होंने एक उर्दू रोजनामा हमदर्द भी जारी किया, जो बेबाकी और बेखौफी के साथ इजहार ख्याल का कामयाब नमूना था। जद्दोजहद आज़ादी और तहरीक अदम तआवुन में भरपूर हिस्सा लेने के जुर्म में मौलाना की जिंदगी का काफी हिस्सा कैद बंद में बसर हुआ। 1919 की तहरीक खिलाफत के बानी भी आप ही थे। आप जनवरी सन 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लिस्तान गए, जहां आपने आज़ादी वतन का इंतहाई शिद्दत से मुतालबा करते हुए फरमाया कि जब तक अंग्रेज मेरे मुल्क को आज़ाद नहीं करेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगा।
6: पाकिस्तान बनाने वाले
7: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
6: पाकिस्तान बनाने

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: इन मिट्टी जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94

0: जी जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी FM 88 रेडियो नेटवर्क तरफा आज़ादी जो जोश ऐं आज़ादी जो जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईजंदड़ अॼो के ॾींहं खे यकीन पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीक़े सां सेलिब्रेट करे रहिया आहिनि। अहिड़ी रीत जी FM 88 रेडियो नेटवर्क बि तमामु सुहिणे नमूने सेलिब्रेट करे रहियो आहे, तमामु घणो जोश ऐं जज़्बो आहे। जेकॾहिं तव्हां मूंखे ॿुधो पिया तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिकु ई वक़्तु जी FM 88 रेडियो नेटवर्क जो जी FM मातली, जी FM मटियारी, जी FM मेहरापुर ऐं जी FM सकरण जे स्टूडियोज़ मां ही शो अव्हांजी ख़िदमत में पेश थी रहियो आहे। जेकॾहिं तव्हां असांखे ॿुधो पिया त कॉल करे सघो था। जी हा, असांजो नंबर नोट करे वठो 0331252578 6 5386 इहो नंबर आहे। ऐं ॿियो जेको नंबर आहे उहो आहे जी हा 0313331185 5 इहे असांजे ॿ नंबर आहिनि जेके तव्हां नोट करे वठो ऐं असांखे कॉल करे ॿुधाए सघो था त अॼोको अव्हां जो ॾींहुं कीअं पियो गुज़रे। ऐं हा, अॼु पूरे पाकिस्तान में जोश ऐं जज़्बो आहे, ॾाढो सुहिणो माहौल लॻो पियो आहे। काफ़ी महिरबानी असांखे ॿुधनि पिया, जिन जिन महिरबानी असांखे जिते जिते बि जॉइन कयो आहे सभिनी जूं महिरबानियूं, सभिनी जा वॾा वॾा सभिनी जा किरोड़े किरुब जो तव्हां असां सां शामिल थी चुका आहियो। सो जनाब यकीन असां जीअं पूरी दुनिया जा ख़ुशनसीब असां उहा क़ौम आहियूं जेका पाकिस्तानी क़ौम आहे ऐं अॼु आज़ादी साण असां पंहिंजो वक़्तु गुज़ारियूं पिया। ऐं दोस्तो महिरबानो, क़दरदानो, भेनरो ऐं भाइरो, आज़ादी जो जेकॾहिं अव्हांखे अहसासु वठिणो आहे त पिंजरे में बंदि हुन क़ैदी हुन पखीअ खां पुछो त आज़ादी छा आहे थींदी, या तव्हांखे आज़ादी जो अहसासु पुछणो आहे त जेल में बंदि कंहिं माण्हूअ खां पुछो त हुनजो क़ैद कीअं थो गुज़रे। जेकॾहिं आज़ादी जो तव्हांखे अहसासु पुछणो आहे त उन शख़्स खां पुछो जेको कड़नि में क़ैद आहे। पर जेकॾहिं आज़ादीअ जो असुल मज़ो आहे उहो इहो आहे त पाण सभु आज़ाद आहियूं, अलहमदुल्ला ख़ुश गुज़ारियूं पिया। कॉल अची चुकी आहे, ॾिसूं था केरु आहे असां सां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। केरु साहिब ऐं किथां खां? नालो छा आहे साईं? अर्जन राठौड़। ख़ुश आहियो, ठीकु आहियो? हा, जश्न आज़ादी मुबारक हुजे। ख़ैर जो मुबारकूं, ख़ैर जो मुबारकूं, महिरबानी, शुक्र आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुश आहीं? जी जी, शुक्र आहे, ठीकु आहियां। तव्हां ठीकु आहियो? अच्छा, बिल्कुलु ठीकु हुजो, अलाह करे ख़ुशि हुजो। महिरबानी। हा, ख़ैर मुबारकूं, तव्हांखे बि जश्न आज़ादी जे ईद जूं मुबारकूं हुजनि। थैंक्यू, थैंक्यू। नालो ॿुध, नालो छा आहे तव्हांजो? तुंहिंजो नालो छा आहे वरी ॿुधायो? हा, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीकु आहे, महिरबानी महिरबानी साईं। लख थोरा साहब। हा, शुक्र शुक्र, मौलवी साहब ख़ुशि हुजो, महिरबानी। लख थोरा अला करे आबाद हुजी, महिरबानी। ओके जनाब, यूनस बकारी जी महफ़िल अवां सां जारी सारी, असांजो बाक़ी 15 मिंट जो साथ आहे। ऐं चार लॻी 44 मिंट थिया आहिनि। ठीकु, 15 शॉर्ट ब्रेक हूंदो, हुन खां पोइ वरी वञू कालू वठंदासीं की ॾियण वञो, छो त प्रोग्राम आहे जारी सारी। हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवांजो पंहिंजो यूनस बकारी। तेसी ताईं असां सां गॾु रहिजो। ऐं हा दोस्तो, पाकिस्तान ज़िंदाबाद जूं ॻाल्हियूं कंदासीं। ओके जनाब। जी जनाब, पर कॉल उन दौरान अची रही आहे, सो मां कॉल अटेंड करण जी कोशिशि कयां थो, ॾिसूं था त कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां? रिज़वान साहब, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो?
1: अलहमदुल्ला, तव्हां ॿुधायो?
0: अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे। जश्न आज़ादी खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि।
1: ख़ैर मुबारक, तव्हांखे मुबारकूं हुजनि।
0: ख़ैर मुबारक, महिरबानी, लख थोरा साईं। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: घर वारा आहिनि।
0: घर वारा, घर भाती ॿुधनि पिया। अच्छा, थैंक्यू, थैंक्यू। जी छा थे चयो तव्हां?
1: मिली नगमो ॿुधायो।
0: मिली नगमो बिल्कुलु ॿुधायूं था। हाणे हिकिड़ो नंढड़ो कमर्शियल ब्रेक आहे, हुन खां पोइ मिली नगमो बिल्कुलु ॿुधायूं था। थैंक यू मिठा माण्हू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, लख थोरा तव्हां जा अव्हां असां सां गॾु रहिया आहियो ऐं असां सां गॾु हुजो, तमामु घणियूं महिरबानी। ऐं हाणे ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, केरु साहब पिया ॻाल्हायो? छा हाल आहे गुल मोहम्मद खासकेली साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, जश्न आज़ादी जूं मुबारकूं हुजनि। ख़ैर मुबारकूं, ख़ैर मुबारकूं, महिरबानी। लख तौर अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: मुंहिंजो भाइटो अली हसन खासकेली।
0: ॿियो केरु आहे? अली हसन खासकेली थो ॿुधे बसि। महिरबानी, तव्हां सभिनी जो, तव्हां सभिनी खे जश्न आज़ादी मुबारक।
2: ख़ैर मुबारक।
0: थैंक यू जी जनाब। इन ते ब्रेक जो टाइम थी चुको आहे, बिल्कुलु ब्रेक वठूं था ऐं बिना ब्रेक बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं केॾे न वञ।
3: अजरक के रंगो से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ो से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
7: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: हाल है सोलंकी साहब? खुश है? ठीक गयो? अवां के जश्न आजादी जी खोड़ सारी मुबारक हुजन।
1: केर मुबारक ता के मुबारक हुजन।
0: तमाम घणी मेहरबानी। मोहब्बत लख थो रहा तवां जा। हेलो, आवाज अचे पियो? जी जी, आवाज अचे पियो? हाँ, तवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? महिरबानी नज़ीर सोलंकी साहब जो, तव्हांजो महिरबानी कॉल करण जे लाइ लख थोरा। महिरबानी, ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। महिरबानी सर, महिरबानी लख थोरा।
1: अलाह कर ख़ुशि हूंदे, मुंहिंजो मस मस आयो आहे दूर थी रहे, हींअर तुंहिंजो आवाज़ ॿुधमि रेडियो में।
0: जी जी जी,
1: ॿुधी तोखे फौरन कॉल कई।
0: महिरबानी महिरबानी, आबाद हुजो, शाद हुजो, तारनि में चंड, खीर में खंड, ऐं मेवनि में अंबु हुजो।
1: अलाह करे कचहरी सदाई कायम रहनि बाबा।
0: महिरबानी साईं, कुर्ब तव्हांजा, ख़ुशि हुजो। ओके ओके ओके। जी जनाब, साज़ी आवाज़ जे साथ में यूनुस बकारी साथ, ऐं साथ वधे पियो आख़िरी लम्हात ॾे। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, वालेकुम अस्सलाम। केरु साहब ऐं किथां खां? छा हाल आहे अलमाणी साहब? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला। जश्न आज़ादी जूं मुबारकूं। लख थोरा तव्हांजा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, मोहबतूं साईं। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: अल्ताफ अलबाणी।
0: जी, ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: अल्ताफ अलबाणी। अहसान अलबाणी।
0: ॿियो?
2: मीर मोहम्मद अलबाणी।
0: ॿियो?
2: नियाज़ मोहम्मद अलबाणी।
0: ॿियो? अच्छा जी, सभिनी खे सलाम ऐं जश्न आज़ादी मुबारकूं। महिरबानी महिरबानी। ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम। छा हाल आहे
0: सर? दुआ लॻी पई। केरु साहब ऐं किथां खां?
3: सर, शुएब जमाली थो ॻाल्हायां।
0: शुएब जमाली साहब, कहिड़ा हाल आहिनि? तबियतूं कीअं आहिनि? ख़ुशि आहियो? साफ़ करियूं था, साफ़ करियूं था, कीअं न साफ़ हलंदी? जश्न आज़ादी लॻी पए, बिल्कुलु। इंजीनियर खे रिक्वेस्ट थो करियां त हाणे हाणे टावर ते चढ़ी वञी कपिड़ो साफ़ करे अचेसि। अॼु सवाल आहिनि कोन, अॼु ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, अॼु माना ख़ुशी जूं मुबारकूं ॾे। जेको हाणे मुंहिंजो शो थींदो न, हाणे इनशाला कंटिन्यू शोज़ हूंदा, उन में तव्हांजा सवाल जवाब खोड़ पुछंदासीं। ठीकु
3: आहे?
0: महिरबानी महिरबानी जमाली साहब, लख थोरा। ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। केरु साहब ऐं किथां खां? गुलाम मोहम्मद चांग। ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? चङा भला,
4: अलाह जा करम, ख़ैर दुआऊं तव्हां ॿुधायो।
0: ख़ैर लॻो पिया, शुक्र आहे। तव्हांखे जश्न आज़ादी मुबारक हुजनि।
4: तव्हांखे हुजनि
0: ख़ैर मुबारक। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
4: मुंहिंजो भाइटो आहे शहज़ अली चांग।
0: हा, ॿियो केरु आहे?
4: शहज़ेन।
0: ॿियो?
4: हसनैन।
0: ॿियो?
4: आसिफ।
0: ठीकु आहे, सभिनी खे जश्न आज़ादी मुबारक हुजनि। ओके, थैंक यू। जी जनाब, अॼु कॉल्स जो सिलसिलो तमामु तेज़ी सां सुठो रहियो ऐं ज़बरदस्त रहियो। 0331252578 6 असांजो नंबर आहे। 3831525786 ऐं 0313311 8 5 इहे ॿ नंबर आहिनि जेके खुलियल आहिनि तव्हांजे लाइ। अञा 4 मिंट केरु हूंदो जेको कॉल कंदो, केरु हूंदो जेको हाल अहिवाल कंदो, छो त प्रोग्राम आहे जारी उसारी। अवां सां मुखातिब आहे वञे पंहिंजो यूनुस बकारी। अॼु आज़ादी जो जोश आहे, आज़ादी जे जशन खे मल्हायूं पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क तां।

0: हिन महिल चार स्टेशन तव्हां साण मुखातिब आहिनि, जिन में GFM मातली, GFM मटियारी, GFM सकरंड ऐं GFM मेहरापुर जो गॾियल ही आवाज़ गूंजे पियो, ऐं ही आवाज़ वतन अज़ीज़ जी मोहबतुनि जोश ऐं जज़्बे सां गूंजे थो। जी जनाब, असां जी कॉल ते केरु आहे? हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, इनशाला इनशाला, थैंक यू थैंक यू। मिठा माण्हू पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू, महिरबानी। जी जनाब, अञा बि हिकिड़ी कॉल आहे, ॾिसो त कंहिंजी आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केर साहब आहीं किथां खां? हा, छा हाल आहे रामचंद्र राणा? ख़ुशि आहीं? चङो भलो, जश्न आज़ादी मुबारकूं। जी जी, शुक्र आहे अलहमदुल्ला, तबियत बिल्कुलु सही, हशाश बशाश लॻो पियो आहियां। हा, केरु केरु दोस्त ॿुधनि था? साईं वालेकुम सलाम, सॼी संगत खे जश्न आज़ादी जूं मुबारकूं क़बूल पवनि।
1: गुलाब गुल तव्हां करायो?
0: हा, गुलाब गुल खे जश्न आज़ादी जूं मुबारकूं हुजनि। मिठा माण्हू, महिरबानी तव्हांजो। ओके जनाब, इहे आहिनि मोहबतूं अवां सभिनी जूं, ऐं मूं वटि बाक़ी बचा आहिनि टोटल टे मिंट, ऐं टिनि मिंटनि में कंहिंजी कॉल अचणु चाहे थी त अची वठे, नथी अचे त ख़ैर हुजे अवां सभिनी जो, छो त अॼु आहियूं पाण सभु ख़ुशि ऐं बिल्कुलु जोश ऐं जज़्बे सां, वाइट सूट पाए, सुहिणा सुहिणा कपिड़ा पाए, ऐं ज़बरदस्त प्यारे वतन पाकिस्तान जो जेको आहे ख़ूबसूरत बेज लॻल आहे मुंहिंजे खीसे ते, ऐं मां बिल्कुलु हशाश वशाश लॻो पियो आहियां। ऐं थोरी देरि अॻु में असां केक बि कटियो आहे, तमामु ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज कयो, ऐं हुन इवेंट में असांजे रेडियो नेटवर्क जो हथु शामिल आहे। यकीन असांजो रेडियो नेटवर्क चाहे थो त वतन अज़ीज़ सां मोहबत कजे, वतन वारनि सां प्यार कजे, वतन वारनि सां दिलि जो इज़हार कजे। सो तव्हां असांजा प्यारा आहियो, असांजा वतन वासी आहियो, असां ख़ुशनसीब आहियूं त असांजी आज़ादी, वतन अज़ीज़ जी आज़ादी खे 79 साल थी चुका। ॾिसंदासीं अॼु केरु आहे असां सां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब आहीं किथां खां? जी मौलवी ताजमहल लाशारी साहब, कहिड़े ॻोठ खां ऐं किथां खां? मोया शाह खां। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, भली कार आहे असां गॾु, केरु पियो ॿुधे? जी जी जी, किरोड़े कुर्ब तव्हांजा साईं, अव्हांखे बि जश्न आज़ादी जूं मुबारकूं हुजनि। ख़ैर मुबारकूं, लख थोरा लख महिरबानी, मोहबतूं तव्हांजो। ओके जनाब, अहिड़ी रीति अॼु के प्रोग्राम जा बाक़ी बचा आहिनि ॾेढ मिंट बचो, ॾेढ मिंट में ॾिसूं था कॉल कंहिंजी आहे। सो कॉल आहे हिकिड़ी वधीक, ॾिसूं था कंहिंजी। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो हलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कटिजी वियो, आवाज़ कोन आयो। ॾेढ मिंट मां बाक़ी सवा मिंट बचो आहे, ऐं सवा मिंट मां बाक़ी हिकु मिंट बचो, हिकु मिंट बचो आहे। हिकु मिंट वारो छा कंदो, मोकिलाए वठां भला, छाकाणि जो न कागे जो अहिड़ी घिंटी वजे, अहिड़ो साज़ ऐं आवाज़ वजे, ऐं अव्हांजो यूनिस बकारी हलियो वञे। हुन खां बहितर आहे त पाकिस्तान ज़िंदाबाद या ख़ूबसूरत नाराणी अव्हां खां मोकिलाए वठूं, त पोइ वतन अज़ीज़ ज़िंदा आहे, वतन अज़ीज़ जी ज़िंदा दिल माण्हू ज़िंदा आहिनि, क़ौम ज़िंदा आहे, जेके क़ौमूं ज़िंदा हूंदियूं आहिनि उन्हनि जा वतन हमेशा शाद ऐं आबाद रहंदा आहिनि। सो अल्लाह करे असांजो ही आज़ाद वतन, आज़ाद फिज़ाऊं असांजे लाइ ता क़यामत बरक़रार रहनि, ऐं असांजे वतन अज़ीज़ पाकिस्तानी कुंड कुर्छ में पाण सभु ईअं मोहबतूं अर्पींदा रहूं, मोहबतूं विरिहाईंदा रहूं, वंडींदा रहूं। त पोइ इन ते अॼु मोकिलायूं था पंहिंजे मेज़बान, पंहिंजे यूनिस बकारीअ खे, असांजे GFM 88 रेडियो नेटवर्क जी तमामु ट्रांसमिशन टीम, तमामु टेक्निकल असिस्टेंट्स, ऐं मुंहिंजे साथ में वेठल स्टूडियो इंजीनियर रब नवाज़ सां गॾु, GFM मटियारी जी टीम, GFM मेहरापुर जी टीम, GFM सकरंड जी टीम समेत अव्हां खां अव्हांजो RJ यूनिस बकारी मोकिलाए थो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बताए।
0: अब आप सुनेंगे
3: सूर्यमयू सरकारी निजी इमारतन ते कौमी परचम भी फड़काया गया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जो तकरीबू आजादी की खुशी में केक भी काटा गया। नौजवान नारियन बुढ़न ए बारन पारा वतन सा मोहब्बत जो भरपूर इजहार करण जो सिलसिलो जारी है।

کراچی میں مزارے قائدے گارڈ جی تبدیلی جی

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आहिन
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज, बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

0: Assalamu alaikum everyone and a very very cool good evening to all of you. Happy Independence Day to all of you. खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशाए जवाल ना हो। और सुनाए दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आज का बहुत बेहतरीन सा दिन, आज का बहुत प्यारा सा दिन। और जनाब, 14 अगस्त का दिन ये हमें दिन याद दिलाता है कि आज के दिन हम आज़ाद हुए थे। आज के दिन हमें उन तमाम चीज़ों से आज़ादी मिली थी जो कि हमारे बहुत सारे रस्म रिवाजों, हमारे बहुत सारे रूटीन वर्क, हमारे बेतहाशा कामों के बीच में जो भी बेड़ियां थी, जो भी चीज़ें थी, जो हमारी राह में रुकावट थी, वो हमने तोड़ दी। और हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसा पाकिस्तान दिया जहां हम आज़ादी से सांस ले सकें, जहां हम अपने इस्लामी तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो जनाब, आज हम वही दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं GFM88 नेटवर्क पर। आपका अपना अशफाक नियाज़ी आपके साथ है और हमारे साथ मौजूद हैं कौन? जी हाँ, बिल्कुल, मेरी को होस्ट सना। तो सना, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
1: बगैर उसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बगैर उसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरा शजरो नसब की तरह, मिली नहीं हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाग दीप बुझे हैं तो ये चराग जला। तो जी मुझे कहते हैं आज सना, तो जो के मैं हूँ आज भी हमेशा की तरह आपके साथ मौजूद पूरे पूरे दो घंटे के लिए। तो रहने वाला जी हमारा और आपका साथ। तो जी कैसे हैं आप सब? और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो मैं आपको एक बात यही बता सकती हूँ कि भैया आज के दिन हमारा जो मुल्क है या हमारी जो सोच है वो सारी आज के दिन आज़ाद हुई थी। तो जी ये आप लोग मुझे ये बताएं कि आज के दिन आप लोग कैसे मना रहे हैं और मेरे साथ आप दो घंटे में क्या क्या बात मुझे ज़रूर बताइएगा।
0: बिल्कुल जनाब, जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि हमारा नंबर भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, जो कि सना का याद होता है। आई थिंक सना को याद है हमारा नंबर।
1: जी जी, मुझे बिल्कुल याद है आपका नंबर।
0: हाँ, तो नंबर जरूर बता दें हमारा नंबर अपने तमाम सामीन को।
1: तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा कितना आज भी ये कहना चाहूंगी कि आपने सबसे पहले हमें ज्वाइन करने के लिए परेशान नहीं होना है और टाइप करना है 8881 पे SMS कर सकते हैं आप हमें SKR लिख के विथ योर सिटी नेम और अपने प्यारे से नाम के साथ। और जो हमें लाइव कॉल कर सकता है, लाइव कॉल करने के लिए आपने टाइप करना है 03000113488 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमें बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं, अपने 14 अगस्त की खुशियां हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर रहे हैं आपकी बातों का वेट
0: और आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम आपको सुनवाएंगे बहुत जबरदस्त से मिली नगमे जो कि आपके जोश व खरोश में मजीद इजाफा करेंगे। और इसके साथ साथ हम यही कहेंगे कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो निगहबां इसके। तो आप जहां कहीं भी हैं, मौजूद हैं, मेरी तरफ से आप सबको पाकिस्तान के यौम आजादी की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर पे लिखी हुई एक तारीख नहीं होती सना, ये दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी बहुत बड़ी नेमत होती है।
1: क्यों? ऐसे ही है।
0: और इस नेमत के पीछे बेशुमार कुर्बानियां भी छुपी हुई,
1: बहुत कुर्बानियां छुपी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जान क्या हजार जान भी हम कुर्बान कर दें तो हम लोग इस चीज का हक अदा कर ही नहीं सकते कि जो हमारे बानी हमारे लिए करके गए थे।
0: बिल्कुल, क्योंकि 14 अगस्त हमें ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि हमारे बुजुर्गों के ख्वाब, कुर्बानियों, उम्मीदों और जिद्दोजहद का नाम होता है। जरा सोचिए, सभी लोग, हम सब सोचें, आप सोचें कि अगर हमारे बुजुर्ग अपने घर, अपनी जमीनें, अपनी आसाइशें और अपने प्यारों को छोड़कर एक आजाद वतन के लिए कुर्बानियां दे सकते थे, तो हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। असल में पता क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा अलमिया सना क्या है बताएं? हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये कि हम ये सोचते रहते हैं हमेशा कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया,
1: क्या किया। बिल्कुल,
0: हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया।
1: हाँ, बिल्कुल, ऐसे ही हम लोग सोचते ही नहीं ना, हमारी
0: सोचना चाहिए हमें।
1: आके रुक जाते,
0: बिल्कुल, हम अपने पाकिस्तान को ईमानदारी, मेहनत, इत्तेहाद, इल्म और अच्छे किरदार से मजबूत बना सकते हैं और लॉयल्टी दे सकते हैं हम पाकिस्तान को, अपनी तरक्की दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, अपना जज्बा दे सकते हैं, तो हम ये देते क्यों नहीं है।
1: बस ये वही बात है कि हमारी जो सोच है या हम लोगों की जो बातें हैं वो एक ही जगह पे आके रुक जाती हैं कि यार हमें जो चीज एक मिल गई है वो मिल गई है। हमने ये नहीं सोचना होता कि यार हम भी तो कुछ करके दिखाएं, क्या हमारी तरफ से इनको क्या तोहफा जाता है, क्या मैसेज जाता है।
0: बिल्कुल, तो सामीन, आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपको जज्बाए जुनून को जगाएंगे और आपके साथ बहुत सारी बातें करने के साथ साथ आपसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो सना, आज हमारे जो लिस्टर्स हैं उनकी वो क्या कहते हैं कि आज थोड़े दिमाग को भी जंग है उनके کے دماغ سے
1: بھی
0: ان کو دوڑائیں گے دماغ کو
1: بالکل ایسے ہی ہے
0: کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم ان کے دماغ کو دوڑاتے نہیں ہیں ان کے دماغ کو چلاتے نہیں ہیں تو وہ بھی نہیں چلاتے اور سستی میں رہ جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آج
1: ہم بھی کہہ رہے ہیں تو سونے ہی دو
0: ایگزیکٹلی تو جناب آپ ہمیں بتائیے گا آج ہمارے سوالوں کے جواب دیجیے گا ہمیں کال کیجیے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں شام کے 7 بجے تک آزادی کا جشن ہم آپ کو منا رہے ہیں آج وتھ جی ایف ایم ایچ نیٹورک تو جہاں کہیں پہ بھی ہماری آواز جا رہی ہے وہاں کے تمام دوستوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں اور انجوائے کریں اچھا تو ثنا میں آج آپ کا ملی نغمہ آج پلے کرنے جا رہا ہوں تو پہلے آپ بتائیے کہ کون سا ملی نغمہ آپ سنیں گی آج
1: میں تو سنوں گی جو میرے فرینڈس مجھے بولیں گے بھائی کہ ہم نے آج یہ سنا دیکھتے نا کہ کون کون ابھی ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں ابھی تک جوائن کس نے کیا عام ڈیز میں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں آج تو آزادی کا دن ہے تو آج تو آپ ہر چیز سے آزاد ہیں بھائی کریں میسج اور بتائیں کہ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے اس آزادی کے دن پہ تو کہتے ہیں کہ جی نہ پوچھو زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے نہ پوچھو زمانے سے کہ ہماری کیا کہانی ہے پہچان تو بس یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو جی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور ہمیں جوائن کریں اور جیسا کہ ابھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ جی بتائیں گے سر اشفاق آپ کو
0: چلے جناب ہمارے ساتھ مسرور احمد ہیں کراچی سے مسرور احمد آرجے ثنا جی السلام علیکم کیسے ہو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو ثنا جی آپ نے پسند پر کوئی بھی ملی نغمہ سنا دو
1: ارے واہ یہ
0: لسنرز نے آپ پہ چھوڑ دیا میں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا تھا دیکھیں
1: جی بالکل ایسے ہی
0: سیکنڈ میسج عبدالرزاق صاحب کا کہتے ہیں اسی پیارے وطن پاکستان جی 79 ورین جشن آزادی مبارکباد پیش کروں تھا پارا محمد خان کمبھار ہالی پوٹرو اسٹاپ خان تو جناب اسان کے بم میسج اچھی چکا ہے سنا تو بالکل ہانے تمام پانی پسند جو ملی لگو بدھائیو تو جی میں پلے کر سکا
1: میں کیا بتاؤں آپ کو سارے ملی لگو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن مجھے نا آپ ایسا ملی لگو سنائیں
0: پلے کرتے ہیں سونی
1: یار وہ ہمیں سلا نہ دیں کیونکہ کچھ ورژن ایسے ہوتے ہیں مجھے یہ سن کے بہت نیند آ رہی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ بندہ ایسے مطلب ملی نغمے چلائے اور سنے جو سوتے وہ کو بھی جگا دے تو کوئی نہ کوئی ایسا کیوں نہ ہم پلے کریں گے جو یار سو بھی رہے
0: ہو ایسا ضرور آپ مجھے بتائیں تو پھر میں تبھی پلے کروں گا ایسا تو میں بھی آج پلے کرنے والا تو دوستو دیکھیں میں نے سنا کو کس مشکل میں ڈال دیا ویسے
1: بہت مشکل والا کام ہے کیونکہ ایک تو مجھے پسند آنا اور میری بات کسی اور کو پسند آنا
0: تو
1: بڑا مشکل کام ہے
0: بالکل مشکل کام ہے لیکن ایسا ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں آج آزادی کا جشن ہم منا رہے ہیں تو جب تک سنا کوئی ملی نغمہ سوچتی ہیں تب تک ہم آپ کو اپنی پسند ملی نغمہ سنواتے ہیں کیسے
1: ضرور ایسے ہی ہوگا
0: چلیں جناب ہم آپ کو سنواتے ہیں جذبہ جنو تو ہمت دہار جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان تو آسمان چھونے کے لیے آپ ریڈی ہو جائیے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ ہیں تو انجوائے کیجیے زبردست ملی نغمہ

0: बोलो। तो बिल्कुल जनाब सना, हम अपनी पहचान बिल्कुल नहीं भूलते, हम पाकिस्तानी हैं और हमेशा हम पाकिस्तानी रहकर ही पाकिस्तान की खिदमत करने का अजम का इरादा करते हैं आज। और सना ये बताइए कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखा है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो और हम पाकिस्तानी कहलाने पे फखर।
1: ये इतने मुश्किल मुश्किल सवाल ढूंढ के चलाए मेरे लिए, तो ये मैं आपको कैसे बताऊं कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं।
0: मतलब आप अपनी फील्ड में जो भी काम कर रही हैं तो जाहिर सी बात है उसी के थ्रू हम लोग अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना।
1: जी जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जैसे अगर हम जहां पर भी जॉब कर रहे होते हैं तो हम अपने जॉब से ही बता रहे होते हैं कि हम किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे ही हम ऐसा अगर हम एक जॉब में भी अच्छा लेके काम करते हैं, हमारा नाम किसी और कंट्री में जाता है, तो यकीन करें वहां पर जाके क्या होता है यार, ये पाकिस्तान से एक लड़की इस अजम पर आई है, इस मुकाम पर पहुंची हुई है, तो ये मतलब हमारे कंट्री का नाम नहीं, ये हमारा नाम नहीं, हमारे पूरे एक पाकिस्तानियों का नाम मशहूर हो रहा होता है कि यार पाकिस्तान से एक लड़की आई है, पाकिस्तान से एक लड़की ने इस चीज में टॉप किया है। तो ये चीज होती है हमारे लिए, अगर हम कोई कॉलेज की कोई चीज भी क्वालिफाई कर रहे होते हैं, हमारे पास लंदन में कोई और देख रहा होता क्या बोलते हैं पाकिस्तान से एक लड़की ने क्वालिफाई किया था, जैसे हम लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं या चाइना से किसी ने क्वालिफाई किया है, तो इस तरीके से कोई और भी ये कहे तो मेरी तो ये विषय कि मैं अभी जहाँ जॉब कर रही होती हूँ कि मेरे हर टारगेट पूरे हों, ताकि आउट ऑफ कंट्री जब मेरा नाम जाए तो ये हो कि मतलब पाकिस्तानी एक लड़की ने अपने ही ब्रांच में रहकर ये चीज टॉप की है, तो मेरे साथ तो यही इशू।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए सना के लिए, इतना बड़ा जबरदस्त ये कह रही है कि मैंने काम किया। तो जनाब चलते हैं कमर्शियल ब्रेक के जाने पे, अगर टाइम चेक हमारे पास साथ इस वक्त मौजूद है तो टाइम चेक के बाद हम ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आते हैं आपके साथ।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु डिश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिले, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटरी कबीर रोड मेरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

0: जी जनो वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से अशफाक नियाज़ी और हमारी को होस्ट सना हमारे साथ मौजूद हैं। आजादी के रंग और जश्न आजादी के इस पुरमसरत मौके पर हम वापस आ चुके हैं आपके साथ GFM88 नेटवर्क के इस प्रोग्राम में। जी सना, ये बताइए कि अब आप क्या कहना चाहती हैं हमारे लिसनर्स के साथ, कोई गपशप करें, कोई उनसे उनके एम्स पूछें और बहुत सारी चीजें आप पूछ सकती हैं। आपको आजादी है आज के दिन।
1: मेरी मुझे तो आजादी वैसे ही है, तो मेरे तो इतने सारे सवाल होते हैं, मैं कहती हूँ यार मैं आपके साथ मौजूद हूँ, दोस्तों मौजूद होने चाहिए। तो अब मैं देखना चाहती हूँ, आप पहले तो ये चेक करें कि हमारे साथ मौजूद कौन है, क्योंकि अगर हम अपना कोई सवाल बता रहे होते हैं, कोई सवाल कर रहे होते हैं, तो आप लोग बहुत देर से उठ के आ रहे होते हैं और कोई सुन रहा होता है सवाल, कोई नहीं सुन पा रहा होता। तो इसलिए मैं यही चाहूंगी कि आप लोग जो है ना टाइमली मुझे बताएं कि आप लोग मेरे साथ मौजूद कौन कौन है।
0: चले सर, आप ये बताइए कि आज आप हमारे तमाम लिसनर से कौन सा सवाल पूछना चाहती हैं।
1: जी पहले मैं देखना चाहूंगी कि हमारे पास मौजूद कौन कौन है।
0: हमारे पास मौजूद तो है जनाब नूर हसन तुनियो साहब, कहते हैं प्लीज मुझे सुना दें दिल दिल पाकिस्तान बाय जुनेद जमशेद, डेडिकेट टू ऑल पाकिस्तानी। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से खालिद जुनेजो साहब, हालार विशाल और ताहिर लुंड बलोच को जिसने आजादी मुबारक दे दें, और तमाम दोस्तों को मेरा सलाम दें। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं असा के में मिली नगमे बुधायो, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं।
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
0: तो जी जी फिर आप क्या फरमा
1: रहे हैं? अच्छा, गम में तो लोग कहते हैं हम लोग एक हैं, और जब खुशी की बारी आती है तो कहते हैं यार तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए पहली बात, और रही बात दूसरी बात ये कि मेरा जो सवाल था आप लोगों से, सवाल मेरा यही है कि मुझे जो पूछना है, मुझे यही पूछना है कि आप लोग आज का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? अगर आप लोग अलग रहते हो अपने पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स के घर पर जाके सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? बहुत सारे लोग आजकल मेरे साथ ऐसे जो ज्वाइन करते हैं वो, और मतलब कम्युनिटी ऐसे ही ज्यादातर जो मेजोरिटी है कि फैमिली से अलग ही रह के लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आजादी का दिन होता है भाई, आजादी का दिन तो वो वही दिन है कि आपने चाहे कंट्री आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए तब भी आपने अपनी कंट्री में आके अपने दिन को सेलिब्रेट करना होता है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं,
0: किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, और निकाले आप लोगों ने कि नहीं,
1: वो पापा, वो तो ये तो
0: वाले पापा लिए कि नहीं, नहीं।
1: ये तो यार इतने चलाक लोग हो गए सर। मैं आपको बताऊं कि कल मैं गई हूँ यहाँ से रात को बाहर, और कल सबने 14 अगस्त कल ही मना ली थी।
0: कल असल में जो स्कूल वाले इंतजामिया थी, तमाम स्कूल वाले, तो बच्चों को आज के दिन के सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने छुट्टी दे दी थी कि वो खुलकर सेलिब्रेट करें। और कल जो स्कूल में तमाम जो फंक्शंस वगैरह टेबलोस वगैरह हुए थे तो वो उन्होंने कल ही कर दिए थे। वो भी एक अच्छी एक रिवायत है,
1: अच्छी
0: रिवायत थी वो। तो अच्छा सना, कभी मुझे आप ये बताइए कि आप स्कूल पढ़ी हैं, कॉलेजेस पढ़ी, तो कभी आपने शौक से इन चीजों में पार्टिसिपेट किया या कभी?
1: बहुत शौक से, नहीं नहीं, बहुत शौक से पार्टिसिपेट किया है मैंने मिली नगमों में, और मतलब होस्टिंग जो सारी मैं ही करती थी स्कूल से लेकर आज तक, मुझे ही होस्टिंग मिलती है इस चीज में।
0: जबरदस्त, अच्छी बात है कि आपको होस्टिंग मिलती थी, और सेम एज इट इज भी मेरा ही हाल है, और मैं तमाम टेबलों में पार्टिसिपेट किया करता था, बड़ा मजा आता था। और हम अपने तमाम उन यंगस्टर्स को, उन टीनएजर्स को एंड स्पेशली जेन जी को कहना चाहते हैं कि आजकल की जो जेन जी हमारी वो बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो यकीनी तौर पर वो ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करने से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और दिल भी खुश होता है। वेल हमने पहले भी कहा कि जैसे हम कहते हैं कि हमने, हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, हमने ये कभी, हम कभी ये हुआ कि हमने अपने आप से पूछा हो कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया? तो आज हम आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले, लेकिन आज हम सब अपने आप से भी तो एक सवाल करें ना कि क्या हम अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करते हैं अपने इदारों में, क्या अपने फ़राइज़ अदा करते हैं, क्या अपने मुल्क का कानून का एहतराम करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, दूसरों के हकों का एहतराम भी करते हैं कि नहीं करते? अगर वाकई इन तमाम सवालों का जवाब हाँ है तो वाकई आप बहुत खुशकिस्मत हैं और वाकई आप अपने पाकिस्तानी होने का हक अदा करें। लेकिन अगर इन तमाम सवालों का जवाब अनफॉर्चुनेटली ना है तो फिर हमें सोचना चाहिए, और ज़रूर सोचना चाहिए। यकीन जाने पाकिस्तान की तरक्की में हमारा छोटा सा किरदार भी बहुत बड़ा बन सकता है, अगर हम प्योर पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते इन तमाम चीजों पर अमल करें। क्यों सना?
1: बिल्कुल ऐसे ही, जो कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो ऐसे ही है जी कि अगर हम अपना काम मेहनत से करते हैं, खुद हमारे पास इतने सारे सवाल जो सर ने पूछे हैं, अगर हमारा जवाब हाँ में है तो यकीनन आप पाकिस्तानी कहलाने के लायक भी हैं। क्योंकि रहना सिर्फ एक रहना ही पाकिस्तानी नहीं होता, बहुत सारे लोग बाहर से आके भी रह जाते हैं पाकिस्तान में, तो नहीं हम तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से ही पाकिस्तानी, तो हमारा काम है कि हम अपना दिलो जान से जो है ना अपना काम पूरा करें।
0: और देखिए ना, हर बंदा ही अपने मुकद्दर का सितारा है।
1: बिल्कुल,
0: अभी हम ये कहें कि नहीं मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है या मुझे वो चीजें नहीं है, तो ये तमाम लेम एक्सक्यूजेस हैं। तो इन तमाम चीजों से हम अगर परहेज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम देखें अगर हम मजदूर हैं, अगर हम कोई भी छोटा मोटा काम करें या कोई भी बड़ा काम करें, तो हम एज अ पाकिस्तानी अपनी फील्ड में अपने दायरा कार में रहकर हम वो चीजें कर सकते हैं जो कि हमें एक अच्छा पाकिस्तानी अपने तमाम फराइज अगर हम ईमानदारी से निभा रहे हैं, अपने ड्यूटी टाइम अपने ईमानदारी से निभा रहे हैं और कोई रिश्वत सतानी कोई करप्शन नहीं कर रहे, तो हम अच्छे पाकिस्तानी हैं। अगर हम चाहें तो रिश्वत भी ले रहे हैं और तमाम फराइज भी पूरे नहीं कर रहे, ड्यूटीज के टर्म्स एंड कंडीशन भी पूरा नहीं उतर रहे हैं और ये करें, तो फिर एक्सक्यूज मी हम पाकिस्तानी हैं तो सही, सिर्फ नाम के हम प्योर पाकिस्तानी नहीं है। तो सना, मैं तब तक कमर्शियल ब्रेक लगाता हूँ, तब तक आप हमारे लिसनर्स से कोई ना कोई सवाल।
1: अच्छा सवाल आप लोग मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा ब्रेक से आने के बाद, कि आप लोग ये बताएं कि हमारा जो पाकिस्तानी फ्लैग है, झंडा है, उसका रंग हरा क्यों है,
0: हरा क्यों है,
1: आपने इसका जवाब मुझे देना है। जब तक हम करते हैं एक ब्रेक और वापस आएंगे, वापस आके करते हैं आपसे सवाल का जवाब।
0: चलिए, हरा क्यों है, आप ब्रेक पे जा रहे हैं तो मुझे जरूर बता दीजिएगा कान में, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले।
1: हाँ बिल्कुल,
0: हमारा जो है वो झंडे का रंग हरा क्यों है जी। तो आप तब तक हमारे लिसनर्स को हमारा नंबर भी तो बता देना, ताकि वो हमारे लिसनर्स परेशान ना हो बेचारे।
1: जी जी, पहले तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, कॉमेंट करने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन आपने ऐसे करना है, 888-1PSKR लिख के आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं अपने प्यार से नाम के साथ, अपने के नाम के साथ। और जो मुझे लाइव कमेंट फेसबुक पे करना चाहते हैं, तो GFM का आपने पेज ओपन कर लेना है और आपको विद आरजे सना और विद आरजे अशफाक के साथ आपको मेरा शो सुनने को मिल जाएगा। तो बिना देर किए आवाज को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और लाइव कॉल करने के लिए आपने टाइप करना है 03000113488 पे आपने मुझे कॉल करनी है और अपने सवाल का जवाब मुझे बताना है। तो जी यहाँ पर चलते हैं, हम एक ब्रेक पे रहेगा मेरे साथ, हमारे साथ
0: क्या बात है, क्या बात है। चले जन, हम फाइनली ब्रेक अनाउंस हो गई तो ब्रेक लेनी पड़ेगी, चलते हैं कमर्शियल ब्रेक के जाने। What?

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

सिंध समेत समूरे मुल्क में 69 जश्न आज़ादी कौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपनि ऐं सूबाई राजधानियुनि में 21 तोपनि जी सलामी सां ॾींहं जी शुरूआति। मुल्की सलामती ऐं ख़ुशहाली लाइ ख़ुशी दुआऊं बि घुरी वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम फटकाया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तकरीबूं। आज़ादी जी ख़ुशीअ में केक बि काटिया पिया नौजवाननि, नारियुनि, बुढनि तोड़े, ॿारनि पारां वतन सां मुहबत जो भरपूर इज़हारु।

प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब, 30 साल तजुर्बो रखंदड़ सिंध जो मशहूर व मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब के पंहिंजे प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असीं हमेशा ख़ुशि आमदी चवंदा आहियूं। डॉक्टर साहब जो ख़ासि महिरबानी जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। डॉक्टर साहब हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हीअ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर असां गॾु हूंदो। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, 0301-96-8151 होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। अगरि अव्हांखे पिते में पथरी आहे, कॾहिं बि मायूस नाहे थियणो, गुर्दे में

0: शामिल थी सको था 0301-96-851 होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन माहिर अमराज गुर्दे पिते मसान की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो संदन जोड़न गोडन जो सूर कुन रग जो सूर नकन नक गलो पुरानो नजलो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नजर की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधण में अचान शुगर ब्लड प्रेशर दिल जहाँ मर्ज फालज खंग टीबी मादे जो सूर मादे की अल्सर त्री जो वधन जिगर हेपाटाइटिस बी सी गुर्दन जो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बार में कद जो न वधन औरतुन में वजन जो वधी वन या मर्दन औरतुन के पोशीदा बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर ए सूमर से सुबह 10 AM to 5 PM ताई जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामूँ वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा प्रोग्राम में काल तरफ वेंदा से कॉलर लाइन से मौजूद है दिसो कि थानो कॉलर होंदो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: साईं मुंजा केर साहब जो गल है
1: साईं कोटली कबीर खादिम से सोलंगी
0: वे खादिम से सोलंगी मां आवाज ही सुनाणे उस खादिम समझी मन अची वाह खादिम वाह
1: हरी मेहरबानी वाह
0: भलेकार भलेकार खादिम साहब खुश आयो तबे ठीक है
1: केरा शुक्र आला जाय सन मदीने रता पान हाल वाला जी बाबा
0: दुआ वन अलहमदुलिल्लाह अल्लाह संजा लखे सान आहन बस सिर्फ दुआ कंदा जो वहां जो मोहब्बत इंशाल्लाह आबाद हो जो मुजा सजन सई छा पुछंदा डॉक्टर साहब का ता पुराना पेशेंट आयो डॉक्टर मंजूर साहब जी
1: सर जी सर मुजे नींदड़ी 18 साल जी ने वात पची बे तकरीबन 15 महीनो थी दवा भी डाडी करे वात न तो छुटे
0: अच्छा काथो भला दवा करे तो डॉक्टर साहब का दवा उठो
1: डॉक्टर साहब अरे कोन आया पेरे आप चक्कर आ कि मैंने डड़न जी बेंदी दवा ते वो बेहतर आला है मेहरबानी दा अरे इन जिंदड़ी आ
0: ये नंदड़ी माशाल्लाह अलन सालन जी आ साल पूरो भी जगह ता वने इलाज करायो थी डॉक्टर मंजूर साहब वट कोन आया कोठली कबीर खा तू राणीपुर वयो उने खैरपुर वयो उने गंबट वयो उने पर वे जी तो के मेरापुरा डॉक्टर साहब दे ना जी सकियो पेशेंट वरी डॉक्टर साहब जो
1: सर सुभाणी दा
0: सु सुभाणी दी अस ना
1: जी जी बाबा
0: चलो माशाल्लाह डॉक्टर साहब बुधाय दो एफएम बुधो ठीक है नंदड़ी सा माथे माथे का मसलो तो कोन है ना
1: अच्छा माथे का मसलो वा
0: जते रखे ना माथे का मसलो से ना तने घर में बात है उनी बात छुटे ही ना तो
1: जी जी सही गाला बा जे किसे माने खाए जी पिकी जी खाए
0: पिकी जी खाए ना बस आ समझ जो ने गाल के असल मसलो आ ही इन सा माथे जो इन जो मादो इन के तो बुरश वगैरह कम दी होंदी या इतरे के जो बात में स्मेल भी तिनी होंदो
1: जी जी सही गाला बा
0: है ना
1: जी जी सही गाला
0: आ इन के बुरश बटर दवा करायो तो माने वो बात वगैरह सही रंदो वाला से बेहतर कंदो को मसलो को ने बुधो एफएम बुधो डॉक्टर साहब ता के बुधाय तो वद एक दुपरो दिखा रहे ने ता पान जो था डॉक्टर साहब सुबाने में दो ता ठीक है जी मेहरबानी मेहरबानी हे सिंह खादिम साहब
2: हां जी सही बिल्कुल दे असन जो पुराना पेशेंट है आई जो है सो नंडी के उन जे के मादे जी तकलीफ है ता गाढ़ो मिर्च तरल शे कटी शे वगैरह मना कराइंदा सी स्पंगुर जी दो ही इस्तेमाल कर सकन ता गाढ़े मिर्च ऐ चाय खा परहेज कन एड़ी तरीके सा रूबरू दिखारे वन तो उनकी जी ट्रीटमेंट थी इनशाला तला उनसा काफ़ी बेहतरी अच्छी बड़ी मेहरबानी
0: प्रोग्राम है सेहत की गाल मेहरापुर एफएम 94 जो ही आवाज़ अवान जो समातुन में पहुंचे पो अवान जो पेंजो मेज़बान हाकिम अली जिसकानी अवान सा गड आही असांजे स्टूडियो में मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब 30 साल तजुर्बो रखंदड़ सिंध जो मशहूर व मारूफ डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब जैसे खास मेहरबानी मोहब्बतों जो कीमती वक्त कढ़ी कर असांजे स्टूडियो में आयो आहे तवां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सको था 0301-96-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे तवां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सको था जी मेहरापुर एफएम 94 जो ही आवाज़ अवांजे समातुन ते पहुंचे पे प्रोग्राम आहे सेहत जी गाल कदें भी अवांखे मायूस नाहे थियणो का भी बीमारी लाइलाज नाहे जेके मरीज लाइलाज थी करे डॉक्टर साहब वट अचंदा अल्लाह ताला जे हुकुम सा अलहमदुलिल्लाह उहे बि सेहत याब थी वञन था जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक जर्मनी जेको मुल्क आहे उन जी फ्रेंचाइज डॉक्टर साहब खणी आयो अवांजे शहर मेहरापुर में जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ऐं स्टोर सामूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में डॉक्टर साहब मरीजन जो इलाज कंदा आहिन गुर्दे जी पथरिया पिते जी पथरिया मसाने जी पथरिया और जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो संधन जो सूर आहे जोड़न जो सूर गोडन जो सूर कुंदरग जो सूर नक कन गलो पुराणो।

0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। काल ते लाइनर मौजूद काल ते मौजूद है लाइन ते दिसना से केर है लिसना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, केर यंदा किथा खां जी अदा छा पुछन चाहिंदा डॉक्टर साहब का?
1: सर तरह तरह पुकार चित्र आए हैं लेकिन
0: ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब अमा के बुदाए तो रेडियो बुदो
2: जी। बिल्कुल देखिए बुखार जी तकलीफ़ है। एक तो जो है सो बुखार कई किस्म जो हूँ मलेरिया होंगी है या टाइफाइड हों वजह अस बुधा नहीं कर देखिए यो चाह रूबरू सुबह क्लिनिक ते अची उन डॉक्टर साहब माहिर
0: अमराज जिनमें गुर्दे पिते मसैने के पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो संदन जोड़न गोडन जो सूर कुंडरक जो सूर नक कन गलो पुरानो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ चेबी मादे जो सूर मादे जी अल्सर तिली जो वधण जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण उर्दन मर्दन के पोशीदा बीमार जो कामयाब इतो। डॉक्टर साहब हर खमीस जुमे छंछर अचर सूमर ते सुबह 10 वगे का 5 वगे तीन जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। असां प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थे सको था। लाइव कॉल जो नंबर है 0301-2196-851।
3: तमाम बेहतरीन ऐसा प्रोग्राम है सेहत असन प्रोग्राम में बजरिया लाइव कॉल शामिल थी सको था 0301-2196-851 कॉल करे डॉक्टर साहब का कहीं भी बीमारी बाबत मालूमात वठी सको था। कदें भी मायूस नाहे थियणो का भी बीमारी ला इलाज नाहे। तमाम परे परे जा पंजाब का वठी करे पंजाब के कई इलाज इलाके का डॉक्टर साहब जहाँ मरीज इंदा रहा अक्सर या डॉक्टर साहब ये भी थो जो अं दिसो दवा मोकलींदा काफ़ी मरीजन के बलोचिस्तान झलमंगसी खुशदार मुख्तलिफ़ इलाक़ का एक कॉलर लाइन से मौजूद है। किथा जो कॉलर होंगे

सदर आसिफ अली ज़रदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी मुलाकात। वज़ीर आज़म सदर के आज़ादी वाले ॾिहाड़े जी मुबारक ॾिनी ऐं तारीख़ी दिफ़ाई मका मुआहिदे खां आगाह कयो। दिफ़ाई मुआहिदे लाइ नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार कंदे वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जे कोशिशनि खे साराहियो। फ़ौज ऐं कानून लागू कंदड़ अदारनि जे पेशावरनि सलाहियतनि खे तहसीन। मुल्क मां दहशतगर्दीअ जे नासूर जे मुकमल ख़ात्मे जो अज़म। सदर आसिफ अली ज़रदारी मौजूदा इलाक़ाई सूरतहाल खे नज़र आॾो रखंदे अवाम खे रिलीफ़ ॾियण

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0300 चौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385।

0: अस्सलामुअलैकुम।
1: नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
0: अदा दुकान जी मशवरी कराई दा
2: यार आज के गोठन में पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब।

0: done.
1: It's 7:15 p.m.
2: This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को

0: काई आजादी आ
1: मां बुधाया
0: उणासी
1: त वैसे थींदी पर हूअं त उणासी आहे न
0: ॾिसो न जंहिं ॾींहुं 14 अगस्त 1947 ते जॾहिं पाकिस्तान आज़ादु थियो त उहो बि त आज़ादीअ जो ॾींहुं
1: हो न काउंट कजे
0: उणासी
1: छो था मनाए
0: इहो ई सवाल आहे न मां त 80 जो थो चवां न त भाई 1947 वारो ॾींहुं बि त आज़ादु असुल त उहो ॾींहुं हुयो न
1: जेको
0: बाक़ी 79 ई सालगिरह आहे पाकिस्तान जी 80 योम आज़ादी सॼी क़ौम खे सभिनी ॿुधंदड़नि खे मुबारक हुजे सही आहे ख़वातीन आज़ादु ऐं अॼु 14 अगस्त जो ख़ुशियुनि भरो ॾियारो आहे ऐं अॼु आज़ादी जो ॾींहुं आहे अॼु खां 79 साल पहिरियों असांजो वतन आज़ादु थियो हुयो माशाल्लाह सो
1: हाणे इहा चीज़ नोटिस कई मां सावा ई तव्हां वाइट पया आहियो सफ़ा सही
0: सो मां इहो पिए चयमि त जेके ज़िंदा क़ौमूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ जेको आज़ादी जो ॾियारो हूंदो आहे न उहो इलाही अहमियत रखंदो
1: आहे
0: सो असां बि आज़ादु क़ौम आहियूं ऐं असांखे पंहिंजे वतन सां प्यारे पाकिस्तान सां इलाही मुहबत आहे ऐं अॼोके ॾींहं ते मां दुआ बि ॾींदुमि ऐं बदुआ बि
1: ॾींदुमि
0: बदुआ ॾिबी आहे न हा दुआ असांजी आहे त असांजो हीउ जेको प्यारो वतन आहे उहो हमेशह ता क़यामत दाइम ऐं क़ाइमु हुजे ऐं दुश्मन खे अलाह सां गारत करे दुश्मन ॾिसो न हिकिड़ा त ज़ाहिरी दुश्मन हूंदा आहिनि न जेके
1: ख़बर हूंदी
0: आहे त दुश्मन आहिनि आम लाइफ में बि आम ज़िंदगी में बि असां हिन जो मिसाल वठूं तरी कुझु दुश्मन अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके दोस्तनि में लिकल हूंदा
1: आहिनि
0: हा पाकिस्तान जे लाइ असांजी दुआ आहे त जेके हुन जा ज़ाहिरी दुश्मन आहिनि ऐं जेके हुन जा लिकल दुश्मन आहिनि अलाह साईं सभिनी खे नेस्तो नाबूद करे हा महफ़ूज़ रखे सो अॼु ख़ैर असां 14 अगस्त आहे आज़ादी जो ॾियारो आहे असां पंहिंजे सामाइन खे बि चवंदासीं त हू बि
1: असांखे अच्छा बिल्कुलु तव्हां छा पिया चयो प्रोग्रामिक कॉल्स बि वठंदासीं प्रोग्रामिक कॉल्स बि वठंदासीं
0: 0333221322888 असांजो नंबर आहे नंबर डायल करे असां

0: प्रोग्राम में शामिल थी सको था ही नॉन स्टॉप प्रोग्राम है कोई कमर्शियल ब्रेक ना हों
1: जी पूरे 8 बजे
0: नॉन स्टॉप 8 बजे तक असा वसा घर घर हुंदा 7 लगी 20 मिनट देते ही थी व्या सो उने करे एकड़ो मिली नगमे गुजरन था मिली नगमे सा पंजे खून के गरमायो था उन बाद में असा लाइव कॉल की तरफ सामने की तरफ ही ना
1: ओके सो ही मिली नगमो आ जको असा बुदना सी एड़ो मिली नगमा जको बाबा चंदा ना सुतलन के भी जगाए छरिंदो सो एड़ो मिली नगमा तो आके बुधराया थी ता सब एंजॉय करजो बिल्कुल
0: चाचे नेमतुल्लाह के जगाए छरिंदो
1: सो तो पेवा चलो सबनी जलाए ही मिली नगमो ही प्रोग्राम आए जनाब शाम जो जशन बिल्कुल शाम जो जशन है तकरीबन अज गर्मी जो डियारो हो गर्मी हुई तमाम घणी तबार जके भी घुमण जो इरादो हों जिन मान जो वो यकीनन हिनमल निकता हों बाहर घुमण जे इरादे सा
0: पहिरियों असां जे ज़माने में हाणे बि उहो ई मज़ा उहो ई जोश जज़्बा आहिनि पर अलाए छो पहिरियों तमामु घणो असां एतिरा एक्साइटेड हूंदासीं या त असां नंढड़ा हूंदासीं तॾहिं एक्साइटेड हाणे वॾा थी विया आहियूं सो तव्हांजी छा पोज़ीशन हूंदी
1: ईअं ई असां बि पहिरियां ख़ुशि हूंदासीं ॾाढो हिकिड़ी ॻाल्हि आहे उन टाइम जॾहिं असां ख़ुशि हूंदासीं नंढड़ा हूंदासीं ख़ुशि हूंदासीं उन टाइम जे वॾा वॾनि माण्हुनि खां पुछा कजे हा त उहे ख़ुशि हुजा
0: आज़ादी जो ॾियारो आहे ऐं ज़ाहिर आहे ॿार जेके हूंदा आहिनि ख़ासि जेके इवेंट्स हूंदा आहिनि आज़ादी जो ॾियारो थियो ईद जो ॾियारो थियो हीउ बि ईद जो ॾियारो आहे सो ॿार जेके आहिनि उहे ज़ाहिर आहे त एक्साइटेड हूंदा आहिनि सो अॼु त बसि तूतलिन जी तू तू लॻी पई आहे पूरे पाकिस्तान
1: चले मिली नगमा एंजॉय करदे

0: ओके ॾिसो ॿुधो तमा ॾाढो सुठो हिकिड़ो मिली नगमो हुयो जेको आयत आरिफ जी आवाज़ में हुयो ऐं ॿियो ॿुधायो तव्हां छा चवणु
1: माशाल्लाह भलो मां इहो बि चवणु चाहियां त तव्हांजो त हाणे त मिली नगमा अचनि ई कोन पिया ऐं हुन जे मथां त अहिड़ो ताज़ो
0: आयत आरिफ जी इहा हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे त उहो हर हिकिड़ी जेको बि मतिलबु ईंदो आहे न चाहे ईद हुजे कुझु बि हुजे त उहो हुन जो हिकिड़ो कलाम मिली नगमो या नात ज़्यादा नथा अचनि ज्यादा अचनि जीअं सभु सिंगर आहिनि त सभु सिंगर पंहिंजो हिकु हिकु मिली नगमो कनि ठाहिनि
1: बसि सही आहे
0: त इहो मतिलबु मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो हुयो समझी आ
1: सही ख़्वातिन आज़ाद हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे असां पंहिंजे शो में भलीकार चऊं था ऐं वक़्तु मां उहो ई अॻ में ॻाल्हि निकिती न त ज़िंदगी गुज़रंदी थी वञे सो वक़्तु 7:44 मिंट थी चुका आहिनि ऐं अॼु असां वटि सिर्फ़ु हिकु कलाकु बल्कि 45 मिंट सां सवा ते त असां आनियर थिया आहियूं सिर्फ़ु असां वटि 45 मिंट आहिनि हुया बल्कि हाणे बाक़ी वञी 41 थी वियो बाक़ी 44 थी वियो
0: सो
1: टाइम इलाही थोरो आहे हुनजे करे असां जल्दी जल्दी मुकाईंदा
0: आहियूं कुझु
1: मुक़ाबिलो सख़्तु आहे ऐं पंहिंजो वक़्तु घटि आहे
0: अच्छा अब्दुल्ला अली असांखे ॿुधनि पिया 14 जो तव्हांखे बि खोट सारियूं मुबारकूं हुजनि और दीदार अली बिरोही भाई में सुन रहे वालेकुम असलाम निदा आ चुकी की ये शो तो 8 बजे होने वाला था ना मेरे साथ धोखा हुआ आपके साथ नहीं भाई आपको थोड़ी मुझे लग रहा है कि सुनने की थोड़ी कान थोड़े आपके कमजोर हो चुके हैं मैं कल भी बता कर गई थी कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक शो चलेगा
1: क्या पता गलती में आपने 8 से
0: नहीं वो मैंने वजाहत की कि मुझे ऐसा जैसे मैंने पहले बोला कि 6 बजे से लेकर 5 बजे में प्रोग्राम करने वाली हूँ मैंने उल्टा बोला था तो वो मैं बोला कि भाई आज मैं उल्टा बोल रही हूँ लेकिन नहीं ये प्रोग्राम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगा
1: तो आपने ये बोला होगा ना 8 बजे से 7 बजे तक चलेगा तो ये कहो ना बाबा तुम
0: ऐसा नहीं बोला था
1: मैंने तो उसने तो उसका तो कोई कुछ नहीं हुआ ना
0: नहीं 2-3 मरतबा वजाहत की थी नहीं निदा अली का
1: निदा अली का
0: हाँ ये निदली का वैसे दर्द दिल का नाम भी निदा अली है
1: अच्छा वो भी निदा है चले हम ज्यादा हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते और एक कॉलर की तरफ चलते हैं उसके बाद जो है फिर कमेंट्स बहुत ज्यादा हैं और पैनल के मैसेजेस भी होंगे अस्सलाम वालेकुम अठारह वारा आवाज़ कटिजे पियो अबो अबो थोड़ो एडे अच ना सूर्या अबो चाचा चाचा आवाज चिचर जी चलो मेहरबानी अदा सोना खान तांगे लख लख वाधायूं हुजनि 14 अगस्त जूं आज़ादीअ जे ॾियाड़े जूं ऐं जीए FM नेटवर्क तां हीअ ख़ासि प्रोग्राम आहे आज़ादीअ ॾियाड़े जो सो तव्हां सां हिन प्रोग्राम में शामिल थियो पिया जी
0: तव्हांखे छा लाइ घुरायो
1: अस्सलाम वालेकुम मां पंहिंजी ड्यूटी ॾियां पियो नी हलो ॻाल्हाए न अदा अदा वालेकुम सलाम अबा कॉल मिली वई आहे केरु था ॻाल्हायो मोहम्मद अयूब जरवार किथां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार सही कहिड़ो हाल आहे जरवार साहिबु खेल पिया वॾी महिरबानी तव्हांखे बि आज़ादीअ जूं लख लख मुबारकूं हुजनि मिली नगमो त ॿुधायो दिलि दिलि पाकिस्तान ॿुधायो दिलि दिलि पाकिस्तान ॿुधायो हवा तव्हां ॾे हवा एॾी आहे अलाए समुंड जे किनारे बीठा हो महिरबानी अदा जरवार साहब असांजे प्रोग्राम में तव्हां शामिल थिया लख थोरा तव्हांजा 7:48 थी चुका आहिनि ख़्वातीन हज़ार 0332132228 मां कॉलर जी तरफ़ हलां तव्हां कमेंट जी तरफ़ हलंदव चलो कॉलर जी तरफ़ हलूं था ॾिसूं केरु सां ॻाल्हायां अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केरु सां ॻाल्हायो जी भुट्टो कहिड़ो हाल आहे तबियत सही आहे न ख़ैर मुबारक मां थोरी देरि जे लाइ सोच में पइजी वियुमि त छा जी मुबारक कुराड़ा थी विया से वाह
0: ईअं ई थींदो आहे
1: जशन आज़ादी मुबारक हुजे मां थोरी देरि जे लाइ सोचो पई जुम लाइ छा जी मुबारक थो ॾे चलो ॿियो ख़ैर लॻो पियो आज़ादीअ जो ॾींहुं कीअं मल्हायो अॼु माशा अलाह स्टेडियम ते विया आहियो छा प्रोग्राम ते विया आहियो छा कंहिं ते जी जी पाकिस्तान ऐं नेटवर्क कान हलो जी जी दिलि दिलि पाकिस्तान ॿुधाए न हलड़ी बंदि हुई तुंहिंजा मोबाइल जा वठ मतिलबु मां ॾिसो न को सिस्टम को हूंदो आहे को हुननि जे मथां चैक एंड बैलेंस हूंदो आहे मां इन करे मथो पिटे पिटे वार ई मुंहिंजा हलिया विया
0: आहिनि
1: बाबा सॼो पैकेज था करायूं ख़ुदा जो कसम हज़ार हज़ार ॿारहें ॿारहें सै जो माना 500 MB बि नथा यूज़ थियनि हले ई कोन थी नेट वॉइस कॉल जी इहा हशर हालत लॻी पई
0: आहे
1: त माना इहा असां जेको आहे सो बहसियत क़ौम असां ई आहियूं सो बहरहाल ॿियनि खे चवंदा आहिनि न इंडिविजुअली हर इंसान पंहिंजे गिरेबान में जाती पाए त जेकॾहिं असां सुठा वतन परस्त ऐं ईमानदार पंहिंजे कम में पंहिंजे प्रोफेशन में हर कोई माण्हू इंडिविजुअली जेकॾहिं सोचे त पोइ मुल्क जेको आहे न हिन कर्ज़ छा कर्ज़ वठण जा कर्ज़ ॾियणु शुरू कंदो हा न त हिते एतिरियूं एतिरा वसाइल आहिनि असांजे मुल्क जा सो बसि आहे उन्हनि जो इस्तेमालु कीअं कजे छा कजे सो साईं वॾे खे चवां त मां त नेटवर्क जा आहे 1500 अजाए हर महीने भरींदो आहियां
0: असांजे लाइ पैकेज कराइण छॾे
1: हलो कयो
0: पैसा ज़्यान कनि बाबा छो हले हिन नेट बहितर आहे त माण्हू पैकेज ई न कराए
1: माण्हू इन्हनि जो बि एहतिसाब हुजणु घुरिजे हिननि खां बि सवाल पुछणु घुरिजे त भाउ ग़रीब आवाम हर कार्ड ते माना 20 रुपया अलाए 25 रुपया अलाए 30 रुपया टैक्स असां खां कलेक्ट कयो वेंदो आहे सो अस्सलाम
0: वालेकुम
1: ॾिसो हाणे हिन जो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम करोनी कंबर खां थाना लाइ गोपाल थो ॻाल्हायां
1: कहिड़ो हाल आहे भाउ ख़ैर लॻो पियो आहे हिन जो नेटवर्क भलो आहे
2: अलहमदिल्ला
1: भाउ चओ।

0: सुठा था लॻनि, तुंहिंजा सभु माण्हू सोणा सुठा था लॻनि, ज़ोर माखी मखण खां मिठा था
1: लॻनि,
0: जंहिंजो चेहरो ॾिसी था सितारा झुकनि, हे ज़मीने वतन सर ज़मीने वतन, मुंहिंजा मिठड़ा वतन मुंहिंजा प्यारा वतन।
1: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, मज़ो अची वियो ज़बरदस्त, माशाल्लाह।
0: ही शेर हुयो मुंहिंजे दादा साईं अवामी शायर गुल सिंह गोपाल शाह जो।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, वाह वाह।
0: ऐं जेके बि सभु ॿुधी रहिया आहिनि हुननि खे सुञाण लाइ गोपांग जा खोर सारा सलाम याली मदद था भाई टेकियल।
1: वालेकुम अस्सलाम,
2: बाय टेकियल,
1: टेकियल
2: बाय टेकियल। अच्छा हिकिड़ो मिली न हले थो, हिते हिकिड़ो चाचे कॉमेंट कयो अथव, ही वारो कॉमेंट स्पेशली तव्हांजे लाइ
1: ॿुधायो, मुंहिंजी नज़र नथी पए।
2: इहो चए थो रिज़वान साहब, अवां सम्झो ॿी शादीअ जी मुबारक पियो ॾे कॉलर तव्हांखे।
1: खाली तस्वीर ॾिठी अथव, खाली कैनवस खाली,
2: उहो माना आर्टिस्ट चवंदो आहे। हाणे तव्हां माना इमेजिन कयो त हिन में कहिड़ी क़िस्म जी माना पेंटिंग थियल आहे।
1: तोते वारो लतीफ़ो न आहे, सम्झी त वियो।
2: शुक्रिया पाकिस्तान। हा दर्दे दिल थैंक यू, तव्हां सां गॾु आयो। उन खां अलावा निदड़ी, तव्हां बि असां सां गॾु आयो, ठीकु है जी। दीदार अली बिरोई, तव्हां शायरी मोकिली आहे। ऐं उन खां अलावा हिदायत अल अहमदानी असांजे प्रोग्राम खे ज्वाइन करे चुको आहे। हाले सुल्तान खे थी सिदरा सरिज़वान ख़वातीन बोल रहे हैं, हम ख़वातीन नहीं है, हम गर्ल्स हैं।
1: मूंखे चाचा चओ था पो ख़बर पए
2: थी
1: सड़े जाते बाए लगे।
2: बिल्कुल सही गाल। अच्छा उन खां अलावा हिदायतुल्ला तव्हांखे मुबारक हुजे बाबा। कमेंट्स बाबा जेके पढ़ूं था, जेके अचनि था उहे पढ़ूं था। मां सोचां पई त आवाज़ छा में आई, हाणे बंदि थियो। निदड़ी कहती है इतनी खुशी किस बात की,
1: जश्न आजादी।
2: अच्छा सिटी दोदापुर से अब्दुल्ला लोहर हमारे साथी अदा रिजवान भाई, अल्लाह ही टाइम खां पो आया आयो, आपको वेलकम, 14 अगस्त मुबारक हो।
1: खैर मुबारक। हाँ वा बस मेरे इवेंट ते को ईद ते को शादी बारात ते मेरे अच्छी विंदा है। सड मिलंदो आ तेंदा आयो ना।
2: बिल्कुल
1: आज सड मिलियो असा
2: पहुंची गया
1: भरियो से सड।
2: अच्छा ये कहते हैं आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, आपको जश्न आजादी मुबारक हो।
1: खैर मुबारक।
2: नालो तो था पांचो लिखियो ही कोने को। अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही, इतना मोरी से आजादी मुबारक सर रिजवान, और बाजी सिदरा
1: सुदरा
2: मीरपुर खास, कब आएंगे
1: तुझे अब्दुल्ला महर भाई? इंशाल्लाह जरूर ईंदासीं।
2: अंबन जी मौसम हुई त बाजी गुलनाज
1: वाकई में जदे भी गाल बोल थींदी आ मोहब्बत से असंकी गुलनाज जो है इनवाइट कंदी है। इंशाल्लाह ताला इंदासे तो जरूर तां से मिलनासी, नैया इवेंट रखनासी उते।
2: नो ने केला सा चोंदा
1: मीटअप मीटअप मीटअप सॉरी आ मीटअप रखनासी। हां सही गाल है,
2: चिता ते मानो जेके जेके यूट्यूबर पाने मीटअप रखंदा आहिनि उन सां आशर थींदा
1: आहिनि,
2: इन करे कैंसिल
1: कयो।
2: चलो टाइम जेको आहे सफ़ा जल्दी गुज़रंदो वञे थो।

0: तो सफा एक दिन एक साया
1: एक से माँ आया ना
0: हाँ
1: कि ना एक से सब पुराना है
0: अन्ना तांग आ ट्रेड चार साल में तो बड़ी होगा
1: माँ जबकि तां नौजवान आए हो उन्हें के हथ बदी गुजारिश कर दूँ तो तां जो जैं भी डिपार्टमेंट से वाबस्त आयो तहां जॉब कियो पिया तहां पढ़ो पिया तहां कमीशन जे एग्जाम्स की तैयारी कियो पिया जैं भी फील्ड से तहां आयो पांजी फील्ड से पांजी जात से जरूर सच्चाई कयो अल्लाह साईं इंशाल्लाह ताला तहां के दिन उर्दू में चवंदा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देगा इंशाल्लाह ताला सो पांजे कम से तहां सच्चा थींदो त माना उहा अल्लाह साईं इंसान के कुरान शरीफ में चवे तो पांजी इबादत के लिए पैदा किया है इबादत जो मतलब यो ना है तो असा 24 कलाक सजदे में पिया हो जाऊं नमाजन में पिया हो जाऊं कुरान शरीफ पढ़ा रहूं पर हलाल रोजी कमाण भी एन इबादत है असा जो स्टूडेंट आय शागिर्द आय दिल लगाए जहाँ पढ़ूँ था तदें यो भी असो इबादत में शामिल इबादत में मतलब अल्लाह साईं असा इन लाइ पैदा न किया अस 24 कलाक अल्लाह साईं की इबादत कंदा रहूँ पर अस जो भी माश क्यों पिया कमायूं पिया जॉब क्यों पिया पढ़ूँ पिया जैसे ईमानदारी से हर कम कंदासी तो असो जो कम है वो इबादत में शामिल असं के जै मकसद के लिए रब पाक पैदा कियो वो मकसद असो पूरो थी वो मुझे यो वो न विसारियो उन मकसद के वठी कर हलंदो तो इन दुनिया में भी कामयाब थींदो आखिरत में भी अल्लाह साईं जे अगियां तां इंशाल्लाह ताला सुरखुरू थींदो मुझे यो नंढड़ो पैगाम पंहिंजे जेंजीस जे लाइ नंढड़नि नंढड़नि जेंजीस जे लाइ
0: सभ का नंढड़ी मां मां बिल्कुल इन कन में सफाई मतलब ब्लॉक करे छ
1: खराब हो
0: नहीं मुझे सही आ हेडा वारो खराब यो खराब ही तां दे हेडफोन्स दी वजह सां थियो आए
1: हां दो असां
0: ओके सो इजाज़त वठूँ था तमाम बुधंदड़न सोनन माणन खां वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझी थी सुभाणी वाले प्रोग्राम में सुभाणे मां 1 बजे वाले प्रोग्राम में
1: जी इंशाल्लाह 1 खां 3 बजे ताई वो कमर्शियल प्रोग्राम न हुंदो जाहिर आ रूटीन जो जो प्रोग्राम पेरियो हलंदड़ हुयो वो सुभाणे का इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कंदासी
0: इंशाल्लाह सो विंदे विंदे भी हां
1: बस पांजे चाचे रिजवान उल्लाह के दुआ में याद रखे छ
0: ता पान उनन के मिष्टाए था वनी वरी पो वरी जे चवन में था पो वरी
1: चलो सही है
0: ओके सो अल्लाह हाफिज

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: आईनी वादे को हर घर तक
4: लाल छोटो चे होता है आईन में लिखल वायदा के बार बार वरचाईंदा भी आयूं पर सदाई निभाईंदा ना आयूं नौजवानन के जो रोजगार मिले मेहनत की कमाई सा घर हले वोट जो एतराम थे वो चाहें था हर इलाके के पाकिस्तान की तरक्की में पैंजो हिस्सों मिले।

सिंध समेत समूरे मुल्क में उड़ासियों जश्न आजादी कौमी जोश ए जज्बे से मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में इकटीह तोहफ़न ए सूबाई राजधानियों में इकवीह तोहफ़न की सलामी से डींहं की शुरुआत मुल्की सलामती ए खुशहाली लाइ खुसूसी दुआं भी घुरी हुयूं। सरकारी ए निजी इमारतन ते कौमी परचम फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तकरीबूं आज़ादी की खुशी में केक भी काटिया विया। नौजवान नारियन बुढ़न तोड़ी बारन पारा वतन से मोहब्बत जो भरपूर इज़हार।

कराची में मज़ार कार ते गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के कैडेट्स गार्ड्स जो जिम्मेवार संभाले वरती हूँ। वे वजीर मादर शाह जी गवर्नर ए काबीना मेंबर से गड मज़ार कार ते हाजिरी गुलन की चादर चढ़ी दुआ घुरी। आईजी सिंध भी पुलिस ऑफिसर से गड मज़ार कार ते हाजिरी भरी।

0: वाघा बॉर्डर से जश्न आज़ादी की पुरकार तकरीब कौमी तराने से तकरीब की शुरुआत का पाकिस्तान जिंदाबाद नारा तकबीर के नारन की गूंज गुलवतनी के जज्बे से सरशार औरतों ने बारन सूदो अवाम की वरी अंग में शिरकत पंजाब रेंजर्स के जवानों शानदार परेड जो मुजाहरों कर दुश्मन से खौफतारी कर छो गंडा सिंह बॉर्डर से भी जश्न आज़ादी की तकरीब दौरान पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड मुल्की सियासी क्यादत जो आजादी के 79वें दिन ते कौम के वादायों कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना समेत समूरन बानियन के भेटा पेश सदर आसिफ अली जरदारी 14 अगस्त आजादी लाए दिनल कुर्बानियन की याद करण जो डी है सभी के गर्ची मुल्की दिफा लाए कम करणो पवो वजी अजम शहबासी कायद अजम के दिनल नजरिए तहत मुल्क के खुशहाल ए तरक्की याफ्ता बढ़ाया वो घर वजीर मोहसिन नकवी आजादी बुजुर्गन अजीम जिदोजहद जो समर है हथियारबंद फौजन पारा 79 आजादी के दिन से कौम के वादायों फील्ड मार्शल नेवल एयर चीफ कौम के मुबारक दिनी ISPR चयो है समूरन खतरन के मुंह दियण वतन के दिफा वारो अज़म बरकरार है कौम से गड़ी हथियारबंद फौज अमन इस्तेकाम लाए साबित कदम रहंदी
1: साल पहले साई सताई करे मते सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम से बात करी सिंधियों की दुआ यही है सबसे पहले हमारा सिंध सरसब तो शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे और उसके बाद कई लोग आए हर वक्त कोई लंदन भाग गया जिसको खुद ओन नहीं करते अब उसके लोग जो बात करते हैं अगले दिन खुद लड़ पड़ते हैं एक दूसरे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए

0: मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं सिरखेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: ख़ुशख़बरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, ख़मीस जुमे, छंछर आचर ऐं

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन
2: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460100

0: क़िलनि ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा
4: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो। जश्न आज़ादी के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
2: हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाखर। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। तो इस यौम आज़ादी पे मेरा एक छोटा सा पैगाम सिर्फ ये है कि मिलजुल के रहें, सिर्फ नहीं बन के रहें, सिर्फ एक पाकिस्तानी होके सोचें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: दिल जान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
3: मैं सबा फैसल। 14 अगस्त वो दिन है जब मुसलमानों के काफिले आज़ादी को मंजिल और उनके ख्वाब को ताबीर मिली थी। काफिले की मंजिल और ख्वाब की ताबीर आज़ादी थी। आज़ादी, आज़ादी जो एक अनमोल नेमत है, जो जिंदगी का हुस्न और निखार है, इंसानियत की बहार।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदील हाशमी और इस 14 अगस्त को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने तमाम नौजवान, जो छोटे हैं उनको भी, जो बड़े हैं उनके प्यारों में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्ले में, वो हम अमन की बात को फैलाएं।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
5: पाकिस्तान बनाने वाले
6: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
5: पाकिस्तान बनाने वाले जद्दोजहद आज़ादी के नामवर सियासी मुमताज सहाफी और शायर मौलाना जफर अली खान 1873 में कोट मेहरत वजीराबाद में पैदा हुए। आपके वालिद मौलवी सराजुद्दीन का शुमार अहले इल्म अशखास में होता था और वो अपने अहद के सर सैयद अहमद खान की इस्लाही तहरीक से खासे मुतासिर थे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पास करने के बाद MAO कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला ले लिया। यहीं से उन्होंने BA किया। यहाँ मौलाना जफर अली खान ने नवाब मोहसिनुल मुल्क के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया। अलीगढ़ कॉलेज के जमाने में अल्लामा शिबली नुमानी और प्रोफेसर ऑर्नल्ड जैसे अकामिला सल्तनत मीर उस्मान के अतालीक भी मुकर्रर हुए।
7: मौलाना जफर अली खान का शुमार मुस्लिम लीग के बानियों में होता है। 1906 में बर्रे सगीर की सियासत में तारीख साज वाकयात रूनुमा हुए। इस साल मुस्लिम लीग के तासीसी इजलास में जो रहनुमा शामिल थे, उनमें मौलाना जफर अली खान भी थे। मौलाना जफर अली खान ने सरगरम सियासी जिंदगी का आगाज तहरीक खिलाफत से किया। 1912 का आगाज तहरीक खिलाफत से किया। 1912 और 1913

0: अपनी बेबाकी और हक गोई के बायस इसे कई बार बंदिशों का सामना करना पड़ा और खुद जफर अली खान को भी कैदोबंद की सौपतें बर्दाश्त करना पड़ी। 1920 में इनकी कैद खत्म हुई तो जिम्मेदार दोबारा शाया हुआ।
1: मौलाना जफर अली खान ने 1927 में मुसलमानों की मुआशी बेहतरी के लिए इस्लामी बाजार की तहरीक का आगाज किया। फिर वो मजलिस अहरार में आए। इस तरह उन्होंने मजलिस इत्तेहाद मिल्लत की बुनियाद रखी। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुनक्किद होने वाले इजलास में मौलाना जफर अली खान पेश थे। उन्होंने करारदाद लाहौर के पूरे मतन का उर्दू तर्जुमा नहायत एहतियात और जिम्मेदारी से किया। मौलाना जफर अली खान एक बुलंद पाया शायर भी थे। उन्हें उर्दू नज्म व नसर पर यकसा उबूर हासिल था, इसी वजह से वो बाबा सहाफत कहलाए। मौलाना जफर अली खान की वफात 27 नवंबर 1956 को हुई।
2: पाकिस्तान बनाने वाले
3: रखी जिन्होंने बुनियाद, आज भी हैं याद।
2: पाकिस्तान बनाने वाले

0: अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को, मुझे कहते हैं फरहीन मलिक और आप लोग सुन रहे हैं नेटवर्क पर ये शो जो कि यौम आजादी यानी कि 14 अगस्त जिस दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ उसका एक स्पेशल शो आपके लिए लेके आए हैं। अच्छा जी, आज के शो में हम जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वो हमारी टैग होगी जिसका नाम है तजदीद अहद का दिन, यानी कि बहुत सारे वादे, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ हुआ ठीक है इस मुल्क को बनाने के लिए, इस मुल्क को एक जगह देने के लिए, इस मुल्क की एक जगह बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियों के साथ साथ मेरे ख्याल में आज भी हम लोग रोज बरोज जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं रोज के हिसाब से हम पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे देते हैं, बट स्टिल एक चीज जो सबसे ज्यादा लैक करती है वो ये कि हमारे यहाँ अब तक हमें इस मुल्क की कदर तो दूर की बात, हमें इस झंडे की कदर भी नहीं आई है। ऑनेस्टली मैं आज सुबह की बात आपको बताती हूँ। आज हुआ ये कि जब मैं आ रही थी ऑफिस की तरफ तो मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी, मेन शाहरा पे, मेन जो सड़क है उस पे एक पाकिस्तान का झंडा जो है वो ऐसे लोग गाड़ियां चल रही हैं उसके ऊपर जा रहे हैं। मतलब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हमारे मुल्क में शायद हर चीज बहुत ज्यादा सस्ती होनी चाहिए लेकिन ये जो झंडा है ना ये इतना नायाब हो जाना चाहिए कि इसको आप सिर्फ ऊंचाई पर देख सके, मतलब ये हर एक की दस्तरस में बिल्कुल हो लेकिन हर एक की दस्तरस में सिर्फ देखने की हद तक हो, मतलब इतना भी सस्ता ना हो जाए, इतना भी अवामी ना हो जाए कि जिसका जो जी में आए इसको खरीदे फेंक दे रोज के हिसाब से। मेरे ख्याल में 13 अगस्त से लेकर आप अगर 15-16 मेरे ख्याल में 15-16 भी कम कह रही हूँ पूरा हफ्ता ले लें अगला, जहां जाएंगे ना जहां सफाई हो रही होगी वहां से आपको 3 झंडियां मिल रही होंगी। मतलब इतने नायाब, इतने कीमती मुल्क में मतलब हैरत होती है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, हमारे यहाँ छोटी छोटी सी चीजें शायद मैटर करना ही खत्म हो चुकी है। खैर, हम इस बारे में और बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपको कुछ।
1: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अली सफीना एंड मैं तमाम तर पाकिस्तानियों को दिस इंडिपेंडेंस डे पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी स्पेशल इंडिपेंडेंस डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो मेरा ख्याल है कीपिंग द करंट सिचुएशन इन माइंड, जो हमारे आमतौर के जो हालात हैं उनको अगर मद्देनजर हम

0: रखें तो मेरा ख्याल है इस टाइम पे सबको यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत नहीं है कि हम एक दूसरे से जुदा होते जाएं। अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, हम सबको सोचना चाहिए इस पे। एंड मेरी तरफ से वंस अगेन 14 अगस्त सबको बहुत बहुत मुबारक।
1: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान। दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

जिन समेत समूरे मुल्क में उणासियों जश्न आज़ादी कौमी जोश ए जज्बे से मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोपन ए सूबाई राजधानियों में 21 तोपन की सलामी से ॾींहं की शुरुआत। मुल्की सलामती खुशहाली लाइ खुसूसी दुआं भी घुरी वयूं। सरकारी निजी इमारतन ते कौमी परचम फड़काया पिया। जिन समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तकरीबूं आज़ादीअ जी खुशीअ में केक बि काटिया विया। नौजवाननि नारियुनि बुढनि तोड़े ॿारनि पारां वतन सां मुहबत जो भरपूर इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म सदर खे आज़ादी वारे ॾिहाड़े जी मुबारक ॾिनी ऐं तारीख़ी दिफ़ाई मक़ाम मुआहिदे खां आगाह कयो। दिफ़ाई मुआहिदे लाइ नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार कंदे वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी कोशिशनि खे साराहियो। फ़ौज ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जे पेशावरनि सलाहियतनि खे ख़राज तहसीन। मुल्क मां दहशतगर्दी जे नासूर जे मुकमल ख़ात्मे जो अज़म। सदर आसिफ अली ज़रदारी मौजूदा इलाक़ाई सूरतहाल खे नज़र आॾो रखंदे अवाम खे रिलीफ ॾियण जी ज़रूरत ते ज़ोर भरींदे चयो त आम वाइपे वारी शयुनि जी बिना रंडक जे फ़राहमी ऐं मुनासिब अघ ते दस्तियाबी यकीनी बणाई वञे। यादगार फतह जी इफ़्तिताही तकरीब दौरान अस्करी क़यादत जी सदर ऐं वज़ीर आज़म सां गॾु शहीदनि जे वारिसनि सां ख़ुसूसी मुलाक़ात। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे वारिसनि जी साबित क़दमी ऐं क़ुर्बानीनि खे ख़राज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे वारिसनि जी मथे ते शफ़क़त जो हथ रखंदे चयो त शहीद असांजे मथे जो ताज आहिनि।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन पर तुमको, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन पर तुमको, जिंदा रहना है कयामत के सहर होने तक।
1: करेगा सारा समा
0: जी एफ एम नेटवर्क।

ऐं प्रोग्राम आज़ादी जी महफ़िल साण करे मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब ख़ान भेण कहिड़ा हाल नवां जा ठीक आहियो उते सही आहे वांझी उमेद अलाह ताला तव्हां सभिनी ॾे ख़ैर ख़ैरियत कई हूंदी असांजूं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि ऐं अॼोको जेको ॾिहाड़ो आहे उहो स्पेशली असांजे लाइ स्पेशली असां जेके पाकिस्तानी आहियूं असांजे लाइ तमामु घणो अहम आहे अलाह ताला अॼोके ॾिहाड़े ते असांखे पाक वतन सरसब्ज़ वतन आज़ादु धरती मुहैया कई हुई ऐं अॼु असां जेको आज़ादीअ सां साह खणी रहिया आहियूं उहो अॼोके ॾींहं जे ई बदौलत खणी रहिया आहियूं जंहिंमें न सिर्फ़ु अलाह ताला जी मदद शामिल हुई पर उन सां गॾोगॾु हिकिड़ी वॾियूं क़ुर्बानीूं शामिल हुयूं जेके असांजे वालदेन असांजे उन्हनि जे वालदेन ऐं जेके असांजा जवान हुया उन्हनि क़ुर्बानीूं ॾिनियूं ऐं उन्हनि क़ुर्बानीनि जे नतीजे में अॼु असां हिन दुनिया जे नक्शे ते हिकु आज़ाद ऐं हिकु ताक़तवर एटमी ताक़त जी क़ुवत रखंदड़ मुल्क तौरु साम्हूं आयासीं। त मुंहिंजे मथां साईं प्रोग्राम असांजो पूरे नेटवर्क तां कनेक्टेड आहे। प्रोग्राम मोरू खां अनियर कयो पियो वञे पर असां सां गॾु सखर वारा बि आहिनि, लाड़काणे वारा बि आहिनि, असां सां गॾु मीरपुर ख़ासि वारा बि आहिनि, असां सां गॾु मटियारी मातलीअ वारा बि आहिनि, असां सां सकरंड ऐं मेरापुर वारा बि आहिनि ऐं मोरो जात माण्हू आहिनि ई आहिनि। जीअं त जी एफ एम नेटवर्क हमेशह कोशिशि कई आहे अहिड़े क़िस्म जा जेके बि इवेंट थींदा आहिनि उन ते स्पेशल ट्रांसमिशन हूंदी आहे, उन स्पेशल ट्रांसमिशन में असांजा जेके सुबुह खां वठी बहितर प्रोग्राम ऑनियर थिया आहिनि जेके असांजे न सिर्फ़ जी एफ एम नेटवर्क पर सिंध जे मशहूरु आर जेस जे आवाज़ में तमामु ॿुधा आहिनि ऐं इहो असांजो अहिड़ो तसलसुल अॼु आख़िर ताईं जारी रहंदो। तव्हां पंहिंजी राय असांजे हिन प्रोग्राम में ॾेई सघो था बज़रिए एस एम एस। एस एम एस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे, हमेशह वांगुरु तव्हांखे असां ॿुधाईंदा आहियूं त तव्हां पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां सां असांजे 888 ते। इहो ज़रूरु उन में लिखणो आहे त तव्हां जो अॼोको ॾिहाड़ो कहिड़े तरीक़े सां गुज़रियो, तव्हां अॼोके ॾिहाड़े ते स्पेशल कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ कयूं ऐं इहो बि उन में ज़रूरु तव्हांखे असांखे ॿुधाइणो आहे त अॼोके ॾिहाड़े ते तव्हां अहद कहिड़ो कयो आहे त असां पंहिंजे हिन क़ौम जे लाइ पंहिंजे हिन वतन जे लाइ छा कंदासीं। अलाह ताला असांखे हीअ सरसब्ज़ धरती अता फ़रमाई आहे। जॾहिं त अलाह पाक हिन धरतीअ खे पैदा कयो त उनखे कुदरत जो हसीन रंगनि सां सिंगारे छॾियो। सरसब्ज़ वण ॿूटा फसल बाग गुल पाणीअ जूं नदियूं धरतीअ जे हुस्न में इज़ाफ़ो कनि थियूं ऐं साए रंग फितरत ज़िंदगी उमेद अमन ऐं ख़ुशहालीअ जी अलामत बणिजी वियो आहे। ऐं तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदो आहियां जॾहिं असां पंहिंजी चौधारी नज़र फेरायूं था न त महसूसु थिए थो त साए रंग में हिकु अजीब कशिश ऐं सुकून समायल आहे। सावा वण न रुगो माहौल खे ख़ूबसूरत बणाइनि था पर असांखे साफ़ हवा छांव ऐं ज़िंदगी जे लाइ ज़रूरी ऑक्सीजन पिणु जेको आहे न उहो बि असांखे फ़राहम कनि था। सावा फसल हारी जी महिनत मुल्क जी ख़ुशहाली ऐं मुस्तक़बिल जी उमेद जी निशानी आहिनि। उन ई पसे मंज़र में जॾहिं असां पाकिस्तान जे क़ौमी परचम ते नज़र विझूं था न त उन जो साओ रंग असांखे फितरत जे उन हसीन तख़लीक़ सां हिकु गहरो तालुक़ु महसूसु कराए थो। क़ौमी परचम जो साओ हिसो मुल्क जे मुस्लमान अक्सरियत जी नुमाइंदगी करे थो ऐं जॾहिं त अछो हिसो अक़लियतुनि जी नुमाइंदगी ऐं अमुन जो पैगाम ॾिए थो। चंड तरक़ी ऐं तारो रोशनी ऐं इल्म जी अलामत सम्झा वञनि था। क़ौमी परचम रुगो कपिड़े जो हिकु टुकड़ो न अथव मुंहिंजा साईं, पर उहो असांजी क़ौमी सुञाणप इतिहाद क़ुर्बानीनि ऐं उमेदुनि जी अलामत अथव। जॾहिं बि साए रंग ऐं अछे रंग जे परचम खे हवा में लहराईंदे ॾिसो था न त दिलि में पंहिंजे वतन जे लाइ मुहबत इज़त ऐं ज़िमेवारी जो अहसासु पैदा थियणु ज़रूरी आहे। असांखे घुर्जे त क़ौमी परचम जी इज़त सां गॾु पंहिंजी धरतीअ जे साए रंग जी बि हिफ़ाज़त करियूं। वध खां वध वण पोखियूं, ॿेलनि खे तबाहीअ खां बचायूं, पाणीअ खे ज़ाया थियण खां रोकियूं, पंहिंजे माहौल खे साफ़ सुथिरो रखूं, छो त सरसब्ज़ धरती सिहतमंद ख़ुशहाल ऐं ख़ूबसूरत मुस्तक़बिल जी ज़मानत हूंदी आहे। शायदि उन ई करे ई जॾहिं असां सोचूं था त अलाह पाक धरतीअ खे साई चादर सां सींगारियो त असांजे क़ौमी परचम में बि साओ रंग छो आहे, त दिलि मां हिकु ई जवाबु निकिरे थो त साओ रंग ज़िंदगी उमेद अमुन तरक़ी ऐं ख़ुशहालीअ जो पैगाम आहे।

0: ए देश मेरा सोना। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला असांखे तमामु घणो खूबसूरत देश अता फ़रमायो आहे। अल्ला ताला जा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं असां। अल्ला ताला असांखे अहिड़ी हसीन वादियुनि वारो, समुंडनि वारो ऐं सरसब्ज़ इलाइक़नि वारो मुल्क अता फ़रमायो आहे। त दोस्तनि जा मैसेजिस बि आया आहिनि, त उन्हनि जा मैसेजिस बि पंहिंजे प्रोग्राम में गॾो गॾु शामिलु कंदा हलंदासीं ऐं उन्हनि खे घणो इंतज़ारु बिल्कुलु न कराईंदासीं। त साजिद अली मुगेरी असां सां गॾु आहे माइक्रो कॉलोनी सखर खां, ऐं चवनि था असांजो अॼु को ॾिहाड़ो तमामु बहितरीन गुज़रियो आहे, सिन सलामत साथ सलामत। जी हाँ बिल्कुल अदा, असांजी दुआऊं आहिनि तव्हांजो न सिर्फ़ अॼो को ॾिहाड़ो बल्कि जेके बि तव्हांजे ज़िंदगीअ जा ॾिहाड़ा आहिनि उहे ॾाढा ज़बरदस्त गुज़रंदा आहिनि। असां पंहिंजे सिंध धरतीअ जे लाइ, असां पंहिंजे पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान जे लाइ तमामु घणा दुआगो आहियूं त उहे सदा चाम जे ॾींहं ताईं सलामत रहनि। वॾी महिरबानी अदा साजिद अली मुगेरी साहब, तव्हां असांजे शो में शामिलु थिया आहियो, लख कुर्ब लख अहसान। तव्हांजा ॻोठ नबीदाद बंबरो नारो खां इमाम नीनू बंबरो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, चए थो अदा गुलाब खान ख़ुशि आहियो। जी अदा साईं, मां बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां, मुंहिंजी दुआऊं आहिनि ऐं मां बि तव्हांजे लाइ दुआ गो आहियां। ऐं चवनि था जश्न आज़ादी जे ॾिहाड़े ते तव्हांखे ऐं तव्हांजी टीम खे मुबारकबाद हुजे। जी अदा ख़ैरु मुबारक, ख़ैरु मुबारक। वॾी महिरबानी तव्हांजी मुंहिंजा मिठा साईं, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। ऐं असांजे तरफ़ खां बि न सिर्फ़ु तव्हांखे, तव्हांजी फैमिलीअ खे, तव्हांजे ओड़े पाड़े वारनि खे, बल्कि पूरे पाकिस्तान जी जेके असांजा लिसनर्स आहिनि ऐं उनखां अलावा जेके असांजा पूरा पाकिस्तानी आहिनि, उन्हनि सभिनी खे बि लख लख वाधायूं हुजनि। त राबिया सखर खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रही आहे, चए थी अलाह का लाख लाख एहसान है कि हमें पाकिस्तान जैसा ख़ूबसूरत मुल्क तोहफ़े में दिया। जी हाँ बिल्कुलु राबिया, हिन में को शक न आहे, अलाह ताला असांखे तमामु घणो हसीन मुल्क अता फ़रमायो आहे। अलाह ताला असांखे समूरी उहे नेमतूं अता फ़रमायूं आहिनि जेके असां जेके उहे मुल्क जन वटि उहे नेमतूं न आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ ख़्वाबु बणियल आहिनि, त उहे समूरियूं नेमतूं अलाह ताला असांखे अता फ़रमायूं आहिनि, त उन जे लाइ असां तमामु घणा रब करीम जा शुक्रगुज़ार आहियूं। ऐं राबिया चवनि था त शुक्र अलहमदिल्ला ऐं शुक्रिया क़ाइदे आज़म। जी हा, न सिर्फ़ु क़ाइदे आज़म बल्कि असांजा जेके वॾड़ा हुया न, जेके जिनखे असां ॾाॾा पड़ॾाॾा तव्हांजा बि हूंदा, असांजा बि हूंदा, ऐं अगरि तव्हां पाकिस्तान जी हिस्ट्री खोले पढ़ंदा न त उन में तव्हां ॾिसंदा त क़ुर्बानीूं जेके आहिनि उहे के सवनि में न आहिनि, के हज़ारनि में न आहिनि, लखनि में क़ुर्बानीूं आहिनि। उहे नौजवाननि मां, उहे वालदेन पंहिंजे नौजवान बचनि जा लाश पंहिंजे हथनि सां खयां हुया, ऐं इहे क़ुर्बानीूं के मामूली क़ुर्बानीूं न आहिनि। कंहिं घर जी क़ुर्बानी ॾिनी हुई, कंहिं दौलत जी क़ुर्बानी ॾिनी हुई, कंहिं ज़मीनुनि जी क़ुर्बानी ॾिनी हुई, त वरी कंहिं पंहिंजनि जूं क़ुर्बानीूं ॾिनियूं। त उन्हनि क़ुर्बानीनि जो ई इहो सिलो आहे न, जो अॼु अलाह ताला असांखे अहिड़ो ख़ूबसूरत मुल्क अता फ़रमायो आहे। बहरहाल हमेशह असांखे इहो कोशिशि करणु घुरिजे त असां पंहिंजे मुल्क वतन पाकिस्तान जे लाइ पाण पतोड़ियूं। तव्हांखे इहा ख़बर आहे त दुनिया तमामु तेज़ीअ सां तरक़ी करे रही आहे न, त उन तरक़ी याफ़्ता दौरनि में असांखे बि त उन्हनि सां गॾु हलणो आहे न, त उन्हनि सां गॾु हलण जे लाइ असांखे छा करणु घुरिबो आहे। जी हाँ बिल्कुल, असांखे तालीम हासिल करणी पवंदी, तॾहिं ई असां उन्हनि सां जेको कुल्हो कुल्हे में ॾेई हली सघंदासीं। त असां गॾु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो, ऐं चवनि था असलाम वालेकुम। त वालेकुम असलाम भाउ मुंहिंजा पठाण खान खोसा साहिबु, कहिड़ा हाल आहिनि अवां जा? ठीकु आहियो त सही आहे, पुराणा लिसनर आहियो अवां जा, अवां असांजा, ऐं असांजे प्रोग्रामनि में शामिलु बि थींदा आहियो, ऐं जश्न आज़ादी मुबारक ॾियो पिया, अलाह से तव्हां ख़ुशि रखे मिठा। मुंहिंजी तरफ़ खां बि तव्हांखे जश्न आज़ादी जूं लख लख मुबारकूं। त नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, हलूं था ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे शामिलु कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस।
1: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300338569।
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता: रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
6: Separated because the two nations are entirely distinct and different. You

तेरे आते हुए भी तेरे ही प्यास रखेंगे, तेरे कोचों पे निछावर कर देने है अपनी जवानी की राहतें, तेरे कोचों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपने उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की साहतें, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू है तो मेरा नाम है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी जात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। कमर्शियल ब्रेक खां पोइ दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे आज़ादी जी महफ़िल प्रोग्राम में भली कार त तव्हांखे मां ॿुधाईंदो अलाई प्रोग्राम जी एफ एम नेटवर्क तां तव्हां ॿुधी रहिया आहियो। जंहिंमें प्रोग्राम सां गॾु मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण, तव्हां असांजे हिन शो में शामिल थी सघो था एस एम एस जे ज़रिए। ऐं एस एम एस कंहिंजो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फ़ोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 ते।

कमल मिठा साईं, पाकिस्तान असांजो प्यारो वतन आहे। ही मुल्क असां लाइ रुगो ज़मीन जो हिकु टुकड़ो न आहे, पर असांजी सुञाणप आज़ादी इज़त ऐं मुस्तक़बिल जो नालो आहे। हर साल 14 अगस्त ते असां पाकिस्तान जी आज़ादी जो ॾींहुं वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदा आहियूं। हीउ ॾींहुं असांखे उन्हनि अज़ीम क़ुर्बानीुनि जी यादि ॾियारे थो, जेकी आज़ादी हासिलु करण लाइ असांजे वॾनि ॾिनियूं हुयूं। पाकिस्तान जी आज़ादी जी जिदोजहद हिकु ढिघी ऐं तारीख़ी जिदोजहद हुई। बरसगीर जे मुस्लमाननि पंहिंजी अलॻि सुञाणप हक़नि ऐं आज़ादु वतन जे लाइ जिदोजहद कई। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जे बेमिसाल क़ियादत ऐं लखे माण्हुनि जी क़ुर्बानी जे नतीजे में 14 अगस्त 1947 ते पाकिस्तान दुनिया जे नक्शे ते हिकु आज़ादु मुल्क तौरु वजूद में आयो। असांजो क़ौमी परचम असांजे वतन जी सुञाणप ऐं क़ौमी इतिहाद जी अलामत आहे। जॾहिं साए साओ ऐं अछो परचम हवा में लहराए थो, त हर पाकिस्तानी जी दिलि में वतन सां मुहबत जो हिकु जज़्बो जाॻी पवे थो। चंड तरक़ी ऐं तारो रोशनी जी अलामत बणिजी वञे थो, जॾहिं त अछो रंग अमुन ऐं मुल्क जी अक़लियत जे हक़नि ऐं एतराम जो पिणु पैगाम ॾिए थो। पाकिस्तान कुदरती हुसन सां मालामाल मुल्क आहे। सिंध जा सरसब्ज़ मैदान, पंजाब जा फसल, बलोचिस्तान जा जबल, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जा ख़ूबसूरत इलाइक़ा ऐं उत्तरी पाकिस्तान जा बर्फ़पोश जबल हिन मुल्क जी ख़ूबसूरतीअ में बि इज़ाफ़ो कनि था। ऐं असांजी धरतीअ खे वधीक सरसब्ज़ बनाइण जे लाइ वण पोखणु, माहौल जी हिफ़ाज़त करण ऐं कुदरती वसीले जो ख़्यालु रखणु बि असांजी क़ौमी ज़िमेवारी आहे। तव्हांखे ख़बर आहे, आज़ादी जो मतिलबु रुगो जशन, झंडा ऐं नारा लॻाइण न आहे। हक़ीक़ी आज़ादी तॾहिं मज़बूत थींदी जॾहिं असां पंहिंजे मुल्क सां ईमानदारी, महिनत ऐं ज़िमेवारीअ सां वफ़ादार रहंदासीं। शागिर्द दिलि लॻाए तालीम हासिलु कनि, नौजवान पंहिंजे सलाहियतुनि खे मुल्क जी तरक़ी जे लाइ इस्तेमालु कनि, उस्ताद इल्म जी रोशनी फैलाइनि ऐं हारी महिनत सां ज़मीन आबाद कनि ऐं हर शहरी कानून जी पासदारी करे, त असांखे पंहिंजे वतन जे मसलनि खे बि सम्झणु घुरिजे। गुरबत, बेरोज़गारी, महांगाई, तालीम जी खोट, सिहत जूं सहूलियतूं ऐं माहौलियाती मसला असां सभिनी जे लाइ वॾो चैलेंज आहिनि। उन सभिनी मसलनि जो हल सिर्फ़ु हुकूमत जी ज़िमेवारी नाहे, मुंहिंजा साईं, हर शहरीअ खे पंहिंजो हिसो जो किरदारु अदा करणो पवंदो।

पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ बिल्कुल, असा सभी की यह दुआ है तो पाकिस्तान हमेशा शाद आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। दोस्तों ने कुछ मैसेज आया उनके भी पांजे प्रोग्राम जी सुवा बढ़ाईंदासी। असन गदाइन केरा है उमर उमरकोट का असो प्यारो भाई अब्दुल जब्बार समी जो असो शो में शामिल है। वही मेहरबानी अदा अब्दुल जब्बार, तुम असो शो में शामिल थे, लख एहसान लख कुर्बत तवा जहाँ चवन था आई लव यू पाकिस्तान आर्मी आई पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ बिल्कुल अदा, असा सभी की मोहब्बत है पांजे वतन के जवानन सा। अस दुआ गयूँ तो अल्लाह तला अस वतन के सदा ही कायम दायम रखे। तो फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो चवे सो गुलाब साहब, पाकिस्तान जश्न आज़ादी जो मुबारकूँ। अदा जन 65 वारी जेका जंग हुई न उन्हें थे को सॉन्ग आए उन्हें फरमाइश कही है। हाजुर अदा बिल्कुल पठान खान तक असा बुधाईंदे मेहरबानी तवी लख एहसान तुम प्रोग्राम में शामिल थे। राबिया सखर का चवे थी अलाक लाख लाख एहसान है कि हमें पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क तोहफे में दिया। शुक्र अलहमदिल्ला और शुक्रिया कायद आजम जैसे कायद आजम ने और दीगर शहदा ने कुर्बानियाँ देकर हमारे लिए इतनी प्यारा मुल्क आज़ाद करवाया। दुआ है कि अल्लाह उनको भी इससे भी प्यारी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिल्कुल राबिया असा दुआ गो उन्हें लाए जन्नत सा के खूबसूरत वतन में आज़ाद हवाओं में साह खण की मौको दिनों। अस उन्हें दुआ गो तो अल्लाह तला उन जन्नत अल फिरदोस में जगहों अता फरमाए। मेहरबानी तवी तुझे प्रोग्राम में शामिल थे। तुम टो मैसेज भी मुझे प्रोग्राम में है उनमें तवजो चवण है त अल्लाह तला जहा लख लख एहसान पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क तोहफे में दिया है। मेहरबानी राबिया तवी तो शो में शामिल थे।

मेरा वतन मेरी शान बिल्कुल असो मुल्क पाकिस्तान असानी शान है। दोस्तों जो मैसेजेस हैं वे भी शामिल कह रहा साजिद अली मुगेरी माइक्रो कॉलोनी सखर का चवे तो अज असि संगत के तरफ का सखर पूरे पाकिस्तान के आवाम के दिल के गहराइन से आज़ादी जो लख लख मुबारकू दुआ है तो असाजे इस्लामी एटमी मुल्क के शादो आबाद रखे आमीन पाकिस्तान जिंदाबाद। जो लिखे तो मैसेज वो है साजिद अली मुगेरी इरशाद अली मुगेरी अली रजा मुगेरी अब्दुल जब्बार मुगेरी अब्दुल खालिक मुगेरी अहमद रजा मुगेरी उनकी फैमिली वही मेहरबानी अदा तवाजी तवा असान प्रोग्राम में शामिल थे फुलजी स्टेशन का फुलजी स्टेशन लग आ मीठा मोरी।

साईं प्रोग्राम आज़ादी जी महफ़िल जो वक़्तु पहुचण वारो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते ऐं वञण खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त आज़ादी हिकु वॾी नेमत अथव जंहिंजी क़दुरु ऐं हिफ़ाज़त असां सभिनि जी ज़िमेवारी आहे। अचो त हिन आज़ादी जे ॾिहाड़े ते हिकिड़ो अज़म करियूं। कहिड़ो अज़म कंदासीं त पंहिंजे वतन जी तरक़ी, खु़शहाली ऐं अमुन ऐं सलामतीअ जे लाइ ईमानदारीअ सां पंहिंजो किरदारु अदा कंदासीं। पाकिस्तान जे आज़ादी जे लाइ कुर्बानियूं ॾींदड़नि समूरनि बुज़ुर्गनि ऐं शहीदनि खे सलाम पेश करियूं था। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, सिंध सलामत, पाकिस्तान सलामत। इनशाला ताला हयाती रही त वरी तव्हां सां ॿिए प्रोग्राम में गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब ख़ान भेण खे इजाज़त। अलह वाही अलह निगहबान। वीदे वीदे तव्हांखे ॾाढो ज़बरदस्त मिली नगमो बि ॿुधाईंदो थो वञा ऐं उनखे इंजॉय ज़रूरु कजो।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मां
3: के आजादी वाले दिहाड़े की मुबारक देने तारीखी दिफा मक्का माहिदे का आगा क्यों दिफाई माहिदे लाए नेक ख्वाहिशन जो इजहार कंदे वजीर आजम फील्ड मार्शल की कोशिशन के सराहियो फौज ए कानून लागू कंदड़ इदारन के पेशा वरड़न सलाहियतन के खराज तहसीन मुल्क में दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे जो अज़म सदर आसिफ ज़रदारी मौजूदा इलाकई सूरत हाल के नजर आडो रखंदे अवाम के रिलीफ दियण की जरूरत से जोर भरीदे आम वाइपे वन शेयर की बिना रंडक के फ्राहमी ए मुनासिब अकड़ से दस्याबी यकीनी बनाई वन यादगार फतह की इफ्तताही तकरीब दौरान अस्करी क्यादत की सदर ए वज़ीर आज़म से गड शहीद के वारिसन से खसूसी मुलाकात सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो शहीद गाजियन के वारिसन की साबित कदमी ए कुर्बानियन के खराज तहसीन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीद गाजियन के वारिसन के मथे से शफकत जो हथ रखते शहीद असाजे मथे जो ताज है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जीएफएम 94।